यू नो व्हाट, ऐसा होता है आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं ना कि मैं हेल्दी खाऊंगा, हेल्दी रहूंगा, ग्रीनरी के बीच ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, मेरा एक फार्म हाउस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप इतना मैनिफेस्ट करते हैं, इतना मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके करियर में भी ये चीजें जुड़ने लग जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है किसके साथ? अक्षय कुमार के साथ। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम आपके साथ। और कितना ओपनली अक्षय कुमार जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बातचीत करते आए हैं और करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। सो बाय द टाइम अक्षय कुमार को एक ऐसा रोल ऑफर हुआ है जिसमें वो एक्सट्रीम हेल्दी काइंड ऑफ स्टफ दिखाई देंगे, मतलब एकदम वाइल्ड लाइफ पर्सन दिखाई देंगे। हाँ जी, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा एक जंगल एरिया फेमस है, दैट इज जिम कॉर्बेट एरिया। उस एरिया में रहने वाला एक ऐसा बंदा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर बहुत काम कर रहा है, मतलब वो एनिमल हंट करके क्या कुछ कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हर एक पॉइंट पे 1960s के इंडिया के एरा में क्या चल रहा है, कुछ ऐसे फील के साथ डायरेक्टर प्रियदर्शन अक्षय कुमार के साथ मूवी प्लान कर चुके हैं। तो कुछ नया साउंड कर रहा है, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
8: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
9: रहो। बात तो आपकी भी ठीक है, इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो गया है इन दिस मॉडर्न एरा कि आपको ना आराधना पूजा करने का वक्त ही नहीं मिल रहा है, ऊपर वाले को याद ही नहीं कर पा रहे हो आप। हाँ, सो व्हाई नॉट इन दिस मॉडर्न एरा थोड़ा मॉडर्न तरीके से आप भजन जैमिंग एंजॉय करो। हाँ, घर के बुजुर्गों से लेकर घर के बच्चे तक इसे एंटरटेनिंग तरीके से देखेंगे, अटेंड करेंगे और साथ में भजन गाएंगे, राइट? सो इंडिया के पहले आप कह सकते हैं ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स ड्यू, एंड इस शो का नाम भी है बैक स्टेज सिबलिंग्स, राइट? प्राची एंड राघव आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिगेस्ट जैमिंग ड्यू। डेट रहेगी 26 सितंबर 2026, एंगेज थिएटर 2 सनटेक सिंगापुर। मतलब एक ऐसी शाम जो भजन जैमिंग के नाम आपको सुनाई देने वाली है। सिस्टिक सिंगापुर से आप टिकट्स लीजिए और बस सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव, आरजे नुपुर आपके साथ।
10: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: शोर सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: इमेजिन एक ऐसा वीकेंड जिसमें आपने मेहनत करके बस एक ही काम करना है कि आपको वेन्यू पे पहुंच जाना है, उसके बाद एंटरटेनमेंट अपने आप मिल जाएगा। कितना सही रहेगा। हाँ, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुरा आपके साथ। एंड वीकेंड पे हम क्या करते हैं, कैफेज एक्सप्लोर करते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, इधर उधर थोड़ा डोल लेते हैं, दोस्तों के संग प्लान बना लेते हैं। सो वाई नॉट आप एक वाओ एलिमेंट इंजॉय करें, राइट? इसके लिए आपको पहुंचना है सुहानी शाह स्पेल बाउंड शो। अ मेंटलिज्म एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सुहानी शाह अ मेंटलिस्ट, जो कि सोशल मीडिया पर भी आप कई बार एंटरटेन कर चुकी हैं, जिनके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। इनका शो 20th September 6 PM onwards क्रेटा अय्यर पीपल्स थिएटर 308 क्रेटा अय्यर रोड सिंगापुर पे होने वाला है। टिकट्स अवेलेबल हैं सिस्टिक सिंगापुर। बाद में मत कहना कि देर हो गई। चलो ठीक है, इतनी सारी मेरी बातें आपने सुन ली, तो आप मुझे बताओ सुहानी शाह का ये जो शो है वो कौन सी तारीख और कितने बजे से शुरू होने वाला है? मैं भी तो देखूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितने स्ट्रांग हैं। 9151893 मेरा नंबर, आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी

0: तो रात मुंबई जो है ना वो चमकाई जा रही है। नहीं नहीं, कोई मूवी रिलीज नहीं होने वाली है इस वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि गणपति बप्पा आने वाले हैं। क्या बात है, जितनी भी सड़कों के गड्ढे हैं ना वो रातों रात रिपेयर किए जा रहे हैं, बिकॉज आपको तो पता है कितने कितने फिट ऊंचे गणेश जी के आइडल्स वहां पे लाए जाते हैं। यार बॉम्बे का सेलिब्रेशन तो बॉम्बे का है यार। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड देखिए इंडिया की तो सड़कों में बदलाव आने वाला है गणपति बप्पा के आने से, लेकिन सिंगापुर के माहौल में भी बदलाव आ चुका है। देखो हर तरह की पूजा सामग्री और एन नंबर ऑफ गणेश जी के जो आइडल्स हैं, हर तरह के कलर कॉम्बिनेशन, पोशाक, वो बैठने का जो एक अंदाज होता है ना कि गणपति जी चूहे के ऊपर विराजमान है, मोदक खा रहे हैं, बहुत ही शैतानी सा उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल सोबर तरीके से नजर आ रहे हैं। सो 6 to 42 inches के जो रेडी आइडल्स हैं वो बहुत बड़ा कलेक्शन आपको मिल रहा है सिंगापुर में बैठे बैठे ज्योति स्टोर्स एंड प्लास शॉप में। इसके लिए आपको पहुंचना है वन कैंपेबल लेन वाला जो ब्रांच है ना, वहां से 5 मिनट की दूरी पे 21 Cuff Road पे, जहां पर आपको गणेश चतुर्थी से जुड़े हुई सारी सामग्री मिल जाएगी। और एक और पॉइंट है, अगर आप वहां की शॉपिंग की रिसीट हमें व्हाट्सएप या टेक्स्ट करेंगे 9151896 पे तो जीत सकते हैं आप पर्ल नेकलेस जीतने का मौका। आज This side must be morning show. Don't go anywhere.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: भाई जब से सेलिब्रिटीज को कॉन्सर्ट्स में जाने का चस्का लगा है ना, तब से इनके सीक्रेट क्रश भी निकल कर आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले मलाइका अरोड़ा का देख लो, वो एक कॉन्सर्ट में पहुंची अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ और लोगों ने स्पॉट कर लिया। तो देखो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, बिकॉज सिंगापुर में तो यार कॉन्सर्ट्स की कमी नहीं है। और ऐसे में वन ऑफ आवर फेवरेट शाम जो कि पिछली बार और उससे पिछली बार भी हाउसफुल रही थी वापस आ चुकी है। मैं आरजे रूपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड वंस अगेन परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेजेंट्स इश्क सूफियाना बाय अमित धामेलिया आने वाली है। मतलब आप एक सूफी अंदाज में गाने तो सुनेंगे ही सुनेंगे, आप उस फील में चले जाएंगे यार। और इतना हैक्टिक लाइफ रहता है ना हमारा, ऐसे में एक पॉज चाहिए, उस पॉज में एंटरटेनमेंट ना मिले तो क्या फायदा। 26th ऑफ सितंबर को होने वाला है ये शो इश्क सूफियाना बाय अमित धामेलिया, एंड आई थिंक आपको जरूर पहुंचना चाहिए। टाइमिंग रहेगी 7 PM to 9 PM, ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब एट टेसनसन 60 टेसनसन रोड सिंगापुर। टिकट $60 and $80 में है। आप टिकट अवेल कर सकते हैं बाय कॉलिंग 8138279 पर। मैं आज अनुपर मसी मॉर्निंग शो पर आपको ऐसी ही खास बातें, ऐसे ही सजेशंस और ऐसे ही एंटरटेनमेंट देती रहेगी। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a must-be partner event.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: भाई माहौल बनाया जा चुका है। वो लोग जो बहुत वक्त से बॉलीवुड में गायब से चल रहे हैं, वो धीरे धीरे सीजन के साथ वापसी कर रहे हैं। हम जी मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ होते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो सिर्फ पीक सीजन वाली मूवीज आती है ना, एकदम प्रॉपर उसी चीज का सीजन चल रहा हो उसी मूवीज में ही नजर आते हैं वो, उसके अलावा नहीं, ना आगे ना पीछे। मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि आगे और पीछे से मेरा मतलब है कि करीना कपूर खान जो कि काफी वक्त से गायब सी चल रही थी, है ना, मतलब ऐसी गायब चल रही थी कि वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं ये भी हमें खुलकर नहीं बताया गया, लेकिन अब पता चला है कि वो एक मूवी में नजर आने वाली हैं जिसका नाम है दायरा, और इसमें वो पृथ्वीराज सुकुमरन और डायरेक्टर मेघना गुलजार के साथ नजर आएंगी। तो मेघना जो है वो हमेशा से थॉटफुल काम करते हुए आई हैं और आगे भी करती रहेंगी, एंड ऐसे में जो इस शो को लेकर, मतलब इस मूवी को लेकर जो एक फर्स्ट प्रीव्यू देना था, कॉन्वर्सेशन करनी थी, उसमें करीना ने बताया कि वो अपने दोनों बेटों को रोने देती हैं, एक्सप्रेस करने देती हैं, वो कभी उनको ऐसा फील नहीं करवाती हैं कि लड़के जो हैं वो रो नहीं सकते, लड़के ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा उनका कहना था। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
1: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रशेबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12 11th टू 25th सितंबर शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर
2: जीजी
1: क्रशेबल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस
2: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर

सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। अच्छा सोचिए, ये जो इतने सारे एक्टर्स हैं, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान से लेकर बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिनकी एक्टिंग हमें पसंद है, लेकिन मान लो मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग घर पे ही एक्टिंग करते, बाहर ना निकल कर आते, तो क्या आज हम इन्हें जान पाते? नहीं। तो अगर आपके अंदर है वो बात, तो घर से बाहर निकलना है मेरे यार। मैं आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड अगर आप होम डेकोर के प्रोडक्ट्स खुद ही कस्टमाइज करते हैं, इसमें काम करते हैं, आपका कोई स्टार्टअप है, गिफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लाइफस्टाइल से लेकर फैशन से लेकर फूड स्नैक्स से लेकर हर तरह की चीजें आप शोकेस कर सकते हो फेस्टिव बाजार 2026 में। एंड अपना जो इसमें कॉस्टिंग रहेगा, प्रीमियम टेबल का $100, स्टैंडर्ड टेबल का $80, जो बाकी जगह से कंपैरिजन में काफी कम है, राइट? और भाई अब त्योहार आ रहा है तो शॉपिंग भी तो करनी है। इसके लिए पहुंचिए कहाँ, 27th सितंबर 10 AM to 6 PM माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल। यहाँ पे लग रहा है फेस्टिव बाजार 2026। अलग अलग कम्युनिटी के लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, लकी ड्रॉ निकलेंगे, बहुत सारे प्राइजेस होंगे, तो मतलब कुल मिलाकर आप हंसते हुए यहाँ से बाहर निकलेंगे। आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: होता है हमें ना, जिन एक्टर्स को देखने का शौक होता है ना, तो हम उनकी मूवीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, और जब हम थिएटर्स में जाते हैं वो मूवी देखने, तो हमारा मन खट्टा हो जाता है कि क्या यार, इससे बढ़िया ना ही देखते तो ज्यादा बेटर होता। डोंट यू थिंक सो? मैं आज यूनिवर्सिटी मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हो चुके हैं, मतलब सलमान हो गया, शाहरुख हो गया, इवन आमिर खान हो गया। आमिर खान ने कब से कोई ऐसी मूवी नहीं दी है जिसको देखकर हम कहें वाओ ही इज बैक, ऐसा हमें कहने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। सो अभी पिछले एक आध हफ्ते से ऐसी कॉन्वर्सेशन हर तरफ चल रही थी कि जो अपने आमिर खान हैं वो रेस मूवी के फोर्थ पार्ट में नजर आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे, लेकिन अब इन चीजों को कंफर्म कर दिया गया है, रेस मूवी के लिए आमिर खान को कंसीडर ही नहीं किया गया है। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सारी बातें सुननी सुनाई तो हमें पता चल जाती है, लेकिन इन रियल कुछ और ही चल रहा होता है, राइट? चलिए, ऑन दिस नोट मी आरजे नूपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
1: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार।
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
4: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for encore show timings.
5: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेले ही। जोश में रहो।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
5: कोकला चीपा की जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला चीपा की जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला चीपा की जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: सो वेंसडे हैज अराइव्ड। यस द वेंसडे, आपका वेंसडे, हमारा वेंसडे। हाय सिंगापुर, आ चुका है वेंसडे। वीक का वो बीच वाला पॉइंट, यहाँ पे मंडे का जो वो सीरियसनेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, एंड फ्राइडे जो है अभी थोड़ा दूर है ये हमें पता होता है, और हम सब बस एक बहुत ही डिसेंट मूड की तलाश में होते हैं। हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा, और वेलकम है आपका मस्ती हैंगआउट में ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आज है 9th of September और डेट भी काफी इंटरेस्टिंग है। आज 9/9/2026 है, इंटरनेशनल सुडोकू डे। ये वैसा ही लग भी रहा है 9/9। भाई सुडोकू का जो क्लासिक ग्रिड है ना, वो 9x9 का होता है, तो डेट बिल्कुल उसके मोड में। एक्चुअली डेट इसीलिए रखी गई थी 9/9 के कॉम्बिनेशन का, सुडोकू डे। मतलब वेंसडे ऑलरेडी हाफ पजल हमारे लिए होता ही है लाइफ में, ऊपर से जो आज का डे है उसका पजल लेवल डिफिकल्टी तो आप समझ ही सकते हैं। उसके अलावा आज वर्ल्ड ईवी डे भी है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सेलिब्रेट करने का दिन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भागती जा रही है। सिंगापुर में ईवीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम देखें तो काफी रेलेवेंट भी है, तो आज का जो डे है वो थोड़ा फ्यूचर फेसिंग भी है कि नहीं। सो मस्ती हैंगआउट में काफी कुछ होने वाला है, थोड़ा दिमाग चलाएंगे, थोड़ा मूड चेंज करेंगे, सिंगापुर की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां होंगी, बॉलीवुड के चटाकेदार किस्से होंगे, एंड थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ी मस्ती, थोड़े आपके काम की बातें, थोड़ा आपका वीक प्लान कर लेंगे, आने वाले दिन प्लान कर लेंगे, एंड बहुत कुछ है।

0: सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। आया देखो आया बापा मोरिया। सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026। सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, यू रिमेम्बर मैंने कहा था आज 9/9 है, मतलब 9th of September, 9/9 इंटरनेशनल सुडोकू डे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डेट ने सिंगापुर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम चूज किया है। यू नो व्हाई? एक बहुत ही फ्रेश इंटरनेशनल स्टडी आई है जिसमें सिंगापुर के 15 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं रीडिंग में वर्ल्ड नंबर 1 पे हैं और मैथ साइंस और कंप्यूटेशनल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें नंबर 2 पे रैंक करते हैं। मतलब 9/9 सुडोकू इनको दे दिया जाए अगर ग्रेड, तो चांसेस है कि बच्चे हमसे पहले उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचा देंगे। यस, एंड देन दे आस्क, हाय आंटी, इसका कोई नेक्स्ट लेवल है? फिर मैं कहूंगी आंटी मत कहूं ना। और मुझे ना इसका कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये वर्ड एकदम टंग ट्विस्टर की तरह, फॉर्मूला याद करना नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ना है, पैटर्न समझना है, सॉल्यूशन बनाना है एंड प्रॉपर सुडोकू ब्रेन, समझ रहे हैं आप? अब इतना दिमाग चलाएंगे तो क्रंच ब्रेक तो बनता है। इनफैक्ट दिमाग चलाने के लिए आपको हेल्दी स्नैकिंग करनी पड़ेगी। सो जीजी मार्ट ब्रिंग्स यू द मिड ऑटम सेल। जी, 11 से 25 सितंबर तक कृषिवल फ्लेवर्ड और क्लासिक नट्स जो है बिल्कुल केमिकल फ्री है, हलाल सर्टिफाइड ऑप्शंस है एंड दे हैव अ ह्यूज रेंज। और ये मिड ऑटम सेल है तो आप जी भर के शॉपिंग कर सकते हो, गिफ्टिंग के लिए, ऑफिस स्नैकिंग के लिए, घर के लिए, प्रीमियम चीजों को अगर रखना चाहते हैं आपको बहुत आसानी से पिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यू नो, बिकॉज दिमाग को तेज करने के लिए वी ऑलवेज रिलाई ऑन नट्स। काजू हैं, अखरोट हैं, पिस्टैचूज हैं, और अगर वो आपको अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स में मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो कृषिवल नट्स की जो ये अमेजिंग क्लासिक ड्राई फ्रूट्स की रेंज है ना, फ्लेवर्ड एंड क्लासिक वंस, इसको अपने बैलेंस डाइट स्टाइल का पार्ट बनाइए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मिड ऑटम सेल है ना, ये आपको मिलेगी कियोस्क नंबर 12 वेलोसिटी एट नोवेना।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। आपने अभी अभी अगर ट्यून इन किया है रेडियो मस्ती पर तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अभी अभी तो हमारा शो शुरू ही हुआ है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये शो सुनना है पर इसको मिस नहीं करना है तो क्या किया जाए, वी हैव आवर ऐप, मतलब हमारा ऐप, आवर ऐप। और हमारा जो ऐप है ये अमेजिंग है। आपको पता है, आपको पहली बात तो ये ऐप का जो नाम है वो है मस्ती मीडिया 24/7, और ये आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। और ये जो ऐप है ना, यहाँ पे आप जाकर के अपने फेवरेट शोज को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ताकि कभी भी आपको सुनने का मन करे मिस कुछ नहीं होगा। यस, वैसे पता है सिंगापुर वेंसडे है, मिडवीक है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। जो लोग अभी अभी आए वो भी सुन लीजिए, अच्छे वक्त आए। वीकेंड और अपकमिंग इवेंट्स का जो कैलेंडर है ना, आप उसको अभी से सेट कर सकते हो। जैसे कि 26 सितंबर की इवनिंग जो है उसको नोट कर लीजिए, प्राची और राघव जो है द बैक स्टेज सिबलिंग्स अपनी मच लव्ड भजन बैठक जो है उसको लेकर सिंगापुर आ रहे हैं। एंड ये एक रेगुलर कॉन्सर्ट नहीं है, इनकी फिलॉसफी है बड़ी सिंपल सी, द स्टेज इज द ऑडियंस। तो मतलब अगर आप जो है सिर्फ सामने बैठ के परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप साथ में गाएंगे, तालियां बजाएंगे, थोड़ा बहुत जैमिंग भी करेंगे, सोलफुल भजन भी होंगे, सूफी फेवरेट्स होंगे आपके, नॉस्टैल्जिक गाने भी होंगे, एंड पूरा वातावरण जो है वो एक रिदम पकड़ के चलेगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा कॉन्सर्ट है जहाँ पे बहुत तरह के लोग, बहुत जनरेशन के लोग एक साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अकेले भी जा सकते हैं। यस, तो आप जरा डेट लॉक कर लीजिए और वेन्यू भी, 26 सितंबर शाम 6 बजे, एंगेज थिएटर 2 एट सनटेक। अगर आपको टिकट चाहिए तो दे आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन सिस्टिक। और ज्यादा जानकारी के लिए आप 9866-7144 पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन देयर इज अ कैच। अगर आप चाहते हैं कि आपको टिकट्स एनी मिल जाए बिना किसी मेहनत के, तो एक जरा सी मेहनत करनी है, हमारे एक सवाल का जवाब देना है। अगर आपने सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप जीत सकते हैं इस कॉन्सर्ट के टिकट्स। तो सवाल जरा दिल थाम के सुनिए। सवाल है, बैक स्टेज सिबलिंग्स के सिंगापुर शो में जो परफॉर्मेंस आने वाली है उसमें जो सिबलिंग ड्यू है उनका नाम क्या है, प्राची एंड राघव या रिया और रोहन? ऑप्शन ए प्राची एंड राघव, ऑप्शन बी रिया और रोहन।
2: आज दिन चढ़ेया तेरे रंग वरगा।
1: जल्दी से अपने जवाब भेज दीजिए 9151-8963 पर, एंड देन यू हैव अ चांस टू विन द टिकट्स। समझे बच्चू?
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मुग्धा को। सो सिंगापुर पिछले कुछ दिनों से ना हवा आबो हवा व्हाटएवर यू से दैट थोड़ी सस्पेंसफुल रही है। क्यों? PSI कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन गुड न्यूज नाउ ये है कि फिलहाल सिंगापुर के सारे 5 रीजन्स की एयर क्वालिटी मॉडरेट रेंज में वापस आ चुकी है। सेंट्रल रीजन का जो PSI है ना, वो भी अनहेल्दी जोन से अब नीचे आ चुका है। यस, हेज का पॉसिबिलिटी कम्प्लीटली गायब नहीं है, तो एडवाइजरीज चेक करते रहना विल बी ऑलवेज अ स्मार्ट डिसीजन। लेकिन अनहेल्दी लेवल जैसा अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। और सस्पेंस की बात चलिए तो एक और चीज है, इस बार हेज नहीं माइंड रीडिंग का सस्पेंस है। पता है आपको, वंडर सोल एस्केपेड्स और एपिक एनकाउंटर्स प्रेजेंट कर रहे हैं सुहानी शाह, स्पेल बाउंड अ मेंटलिज्म एक्सपीरियंस लाइव इन सिंगापुर। डेट है 20 सितंबर 2026 शाम 6 बजे एट क्रेटा आयर्स पीपल थिएटर। जी, नाउ दिस शो इज इन इंग्लिश, तो ज्यादा किसी को समझने में दिक्कत होगी नहीं। वैसे भी वो माइंड रीड करेंगी तो आपको क्या समझना है, आपको तो वो खुद ही समझ लेंगी, है ना। माइंड रीडिंग है, मेंटलिज्म है, इम्पॉसिबल सी जो बातें आपको लगती है आपके सामने वो पॉसिबल होंगी। टिकट्स आर अवेलेबल ऑन SISTIC, SISTIC। लेकिन उसके अलावा हमारे पास भी कुछ ऐसा है जो आपको टिकट्स जिता सकता है। सुहानी शाह का जो सिंगापुर का शो है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है ग्लू बाउंड या ऑप्शन बी स्पेल बाउंड। सही जवाब भेजिए और टिकट्स हम आपको दे देंगे। सही जवाब भेजने के लिए 9151896 पर। समझ रहे ना?

अभी फिलहाल हवा थोड़ी क्लियर है, तो एक काम करते हैं सुहानी शाह, आपका दिमाग कितना पड़ता है उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि आपको कितनी चीजें याद रहती हैं। वो जवाब आएंगे तो पता लग जाएगा।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुग्धा को एंड दिस इज द सेकंड आवर, आई मीन आवर आर ऑफ दिस शो। तो सिंगापुर, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है ना कि वो रूम में आते हैं और आते ही पूरा सीन एकदम लाउडर, चीजें कलरफुल सी दिखने लग जाती है, एंड थिंग्स फॉलो ब्रदर, थिंग्स फॉलो, समझ गए? यस। रवि किशन जी फिलहाल एग्जैक्टली उसी जोन में चल रहे हैं। उनकी एक लाइन है ना वायरल वाली, मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज, पागल कर देंगे एकदम ये सबको बोल बोल के। ये जो मीम है ना वो सीधा अभी टाइटल बन रहा है, ये फिलहाल एक गाना बन गया है जी। 11 सितंबर को ये गाना रिलीज हो रहा है, मतलब इंटरनेट ने एक लाइन को पकड़ा जो उसके बाद पब्लिक ने उसको ट्रेंड बनाया और अब बीट पे बूटी होगा, मतलब ये पूरा गाना ही अब आपके सामने आएगा, मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज। अब जब एनर्जी और बीट की बात चली है तो सिंगापुर, यू कैन फील द बीट। सितंबर का एक प्रॉपर हाई एनर्जी फेस्टिव प्लान तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेशोत्सव 2026 14 से लेकर 18 सितंबर तक ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड। आपको पता है 14 को गणेश प्रतिष्ठापना होगी, डेली मॉर्निंग और इवनिंग में प्रेयर्स होंगे और हर शाम को 7 बजे कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगे और इवनिंग प्रेयर के बाद में ढोल ताशे का कार्यक्रम होगा। एंड इस ढोल ताशे का कार्यक्रम, सारी एनर्जी एक तरफ एंड ढोल ताशे की एनर्जी एक तरफ, इसकी एनर्जी का लेवल समझना उन्हीं के बस की बात है जिन्होंने कभी इसके परफॉर्मेंस को देखा हो। एंड 18 को जय जय उत्तम एट 5 PM एंड उत्तर पूजा होगी रात के 8 बजे। एक बहुत ही स्पेशल मेंशन है आइडल स्पॉन्सर के लिए, मतलब जिन्होंने गणपति जी की प्रतिमा को स्पॉन्सर किया है, श्रीमंत दगरू सेठ हलवाई, सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट पुणे। तो जी, रवि किशन वाली एनर्जी एंड गणपति के ढोल ताशे की एनर्जी अगर एक साथ आ जाए तो एनर्जी फॉलोज माय ब्रदर, एनर्जी

इस इवेंट को तो नहीं ही मिस करना है, किसी भी कीमत पर नहीं। कोई भी इवेंट मिस नहीं होगा। प्लान अच्छे से करिए, सब जगह वक्त पे पहुंच जाएंगे, समझे?

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक। बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। आया देखो आया बप्पा मोरिया। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, Open Field beside Holiday Inn 2 Owen Road, Farrer Park. Maharashtra Mandal Singapore ka Ganesh Utsav 2026.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, तो सिंगापुर बॉलीवुड में कभी कभी एक कास्टिंग अपडेट जो है वो काफी होती है पूरा नॉस्टैल्जिया बटन प्रेस करने के लिए। यस, आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर का जब हम नाम लेते हैं, ये नाम फिर से एक साथ आ रहा है और जैसे ही हम इन दोनों को एक साथ में मेंशन करते हैं हमारे ऊपर लगान फीवर आ जाता है, दैट नॉस्टैल्जिया लगान फीवर। एक नई फिल्म है ललकारा एंड रिपोर्टेडली 1952 इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के बैकड्रॉप पर इसको बेस किया गया है। इट्स अ पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा एंड आमिर खान लाला अमरनाथ जी का रोल प्ले करने वाले हैं और कास्ट में दानिश पंडोर ने उनको ज्वाइन किया है जिन्होंने अपना धुरंधर में उजैर का रोल प्ले किया था। याद आया, इस नाम से आपको याद होगा, दानिश भाई मतलब धुरंधर के उजैर बलोच, आपने उनको वहां देखा था। वो फिल्म में आमिर के एक दोस्त का रोल प्ले करेंगे। सिद्धांत गुप्ता ने कास्ट को ज्वाइन किया है, he'll be a part, और विक्रांत मैसी इस प्रोजेक्ट में नहीं है। तो ललकारा की स्टार कास्ट फिलहाल तो यही आई है। मुझे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या लग रही है, आमिर, आशुतोष एंड क्रिकेट, यू नो ये तीन चीजें हैं जिन पे मेरा फोकस है। अगेन आमिर, अगेन आशुतोष एंड अगेन क्रिकेट, क्या तिगड़ी है भाई साहब। ऑडियंस का दिमाग ना ऑटोमेटिकली बोल रहा होगा भाई लगान वाली फीलिंग वापस आ रही है, बस ये तबका लगान वसूलेंगे नहीं लेकिन पूरा पूरा बदला जरूर लेने वाले। इस बार स्टोरी अलग है, एरा अलग है, राइवलरी अलग है, कंपैरिजन तो देखो हो जाएगा बट क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रिपोर्टेडली अभी तो शूटिंग ही इसकी 2026 नवंबर में शुरू होने वाली है। एंटरटेनमेंट में जो मैंने आपको एक और ललकारे का ललकारा दिया है, आप इसको एंजॉय करो। आई विल बी राइट बैक, स्टे कनेक्टेड।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट्स $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: समटाइम्स वीकेंड प्लान लाउड होना जरूरी नहीं होता है। एक ऐसी इवनिंग अच्छी लगती है जहाँ पे म्यूजिक हो, फील हो, थोड़ा सा सोल हो साथ में। परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके लिए एक ऐसी ही शाम लेकर आ रहे हैं, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया। नाम आपका मूड सेट करे, नाम बड़ा सोलफुल सा लगता है ना, सूफी फ्लेवर्स, सोलफुल सी आवाज है, लाइव म्यूजिक है और एक ऐसी शाम है जहाँ पे मेलेडी और इमोशन दोनों साथ साथ चलेंगे। डेट नोट करिए, शनिवार 26 सितंबर 2026 7 से लेकर 9 बजे तक एट ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब टेसनसन 60। टिकट्स जो है वो $60 और $80 के हैं और बुकिंग के लिए आप पे नाउ पर जाकर के सीधे टिकट्स बुक कर सकते हैं 8138 2790 पर। पे नाउ करिए और टिकट बुक कर लीजिए। और हाँ, मस्ती मीडिया नेटवर्क तो साथ में है ही, तो अगर आप सितंबर का कैलेंडर जो है उसकी एक म्यूजिकल लाइनअप तैयार कर रहे हैं, देर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग इन सितंबर, आप खुद सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक प्लानर लेके बैठिए ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो। आई तो कीप ऑन रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती हैंग आउट। बॉलीवुड आर्ट, एंटरटेनमेंट आर्ट और एंटरटेनमेंट का एक और जरिया होता है अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आप फुल ऑन मस्ती कर रहे हो। दिस इज द प्लेस, फेस्टिव बाजार। ये जो है एक ऐसी ही जगह है। ये ना आपका रिस्पांस इतना जबरदस्त रहा यहाँ पे कि सीन ऑलमोस्ट अब उल्टा हो चुका है। पहले हम कह रहे थे स्टॉल्स बुक करो, स्टॉल्स बुक करो। नाउ आपका इतना अमेजिंग ओवरवेलमिंग रिस्पांस है कि स्टॉल्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। $80 के तो ज्यादातर सोल्ड आउट हो चुके हैं, $100 के भी कुछ एक बाकी है। सो नाउ बिकॉज स्टॉल्स आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आए, है ना, ताकि जो बिजनेस अपना यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, जो अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं, अब उनको उसको दिखाने का मौका मिले। तो आपको कहाँ पे आना है? नारपानी माउंट बैटन CCIAAC प्रेजेंस फेस्टिव बाजार 2026। दैट्स हैपनिंग ऑन संडे 27th of September सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक एट माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल में। एंड एज आई टोल्ड यू, स्टॉल्स आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। वेंडर्स का एक्साइटमेंट आप समझ सकते हैं, जिन जिन का स्टॉल बुक हो चुका है अब वो लोगों का इंतजार कर रहे हैं और हम वो लोग हैं जो इस शाम में 4 चांद लगाएंगे। इवेंट में 4 नहीं 14 चांद लगा देंगे। आप सोच ही क्या रहे हैं, सिंगापुर का फुल फुटफॉल हमें यहाँ पे चाहिए। शॉपिंग करिए, फैशन, फूड, स्नैक, होम डेकोर, गिफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, लाइफ स्टाइल, ओ माई गॉड देयर सो मच। और अगर आप सोच रहे हैं ओ माय बच्चे क्या करेंगे, अरे भैया बच्चों के लिए बाउंसी कैसल, जॉय राइड्स, लकी ड्रॉ प्राइजेस, और ये चाहिए बच्चों को, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, यानी लाइव परफॉर्मेंसेस भी है, और क्या चाहिए। फैमिली को ले आओ, फ्रेंड्स को ले आओ, संडे प्रॉपर फेस्टिव आपका हो जाएगा भाई। एंटरटेनमेंट ये भी तो है, फुल फैमिली के साथ मजे करो मित्रा, ऐश करो मित्रा, समझे। दिस इज सपोर्टेड बाय पीपल्स एसोसिएशन विद मस्ती मीडिया नेटवर्क। डेट वापस नोट करिए, 27 सितंबर, फेस्टिव बाजार 2026 है। स्टॉल्स तैयार हैं, अब आपका इंतजार है।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. What? Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a musty partner event.
3: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्तार रफ्तार देखो, आंख मेरी लड़ी है,
4: लड़ी है, लड़ी है, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक शो के थर्ड एंड लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक सवाल है, अगर दुनिया का मैप ही थोड़ा मिसलीडिंग हो जाए तो हम कितनी चीजों को सिर्फ देख कर ही मान लेते हैं कि वो सच है ना, पर सोचो अगर नहीं है तो। हम सब ने अपने अपने बचपन में एक वर्ल्ड मैप देखा है, फिजिकल पॉलिटिकल दुनिया भर की तरह का है ना, और ज्योग्राफी के एग्जाम के पहले उसको बहुत घिस घिस के याद भी किया है। उसमें पोल्स के पास वाली कंट्रीज जो है एक्चुअल साइज से काफी बड़ी दिखाई देते थे, इसीलिए ग्रीनलैंड और रशिया जो है बहुत बड़े लगते थे, जबकि अफ्रीका का स्केल मैप देखकर समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली है क्या। अब रियलिटी, अफ्रीका रफली 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, मत जोड़ो उंगलियों पे, नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा है कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया और कई सारी कंट्रीज उसमें फिट हो सकती हैं। और इसी डिस्टॉर्शन को बेटर तरीके से दिखाने के लिए इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन जो है वो बनाया गया, जो कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के रिलेटिव एरिया को ज्यादा एक्यूरेटली प्रिजर्व करता है। सो नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि आफ्टर ऑलमोस्ट 500 इयर्स वर्ल्ड मैप बदल गया है तो आप ताज्जुब ना करिएगा, क्योंकि ये सच है। वर्ल्ड मैप जो है आफ्टर 500 इयर्स ऑलमोस्ट बदल चुका है। अब आपको कंट्रीज का एक्चुअल साइज दिखाई देगा, न कि प्रोजेक्शन वाला साइज। आपका पर्सपेक्टिव ही पूरी पिक्चर बदलने वाला है, समझ रहे ना। जस्ट लाइक हमारा वेंसडे, सुबह तक लगता है वीक हमारा जो एकदम एवरेस्ट है, शाम तक देखो तो ऐसा लगता है कि ओ भाई साहब आधा तो हम चढ़ चुके हैं, बस इतना ही सा तो बाकी है, हो जाएगा। परसेप्शन चेंज हो चुका है, हमने जितना कुछ पढ़ा था वो चेंज हो चुका है, मैप ही चेंज हो चुका है भाई। एक काम करो, जो चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही हो ना, उसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखो, गहन अध्ययन करो। यहाँ तो 500 साल लग गए, आपकी प्रॉब्लम में 500 साल तो डेफिनेटली नहीं लगेंगे, है ना। दिस इज अमेजिंग यार, अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल, इतने साल वर्ल्ड मैप भी सामने लेकर के लो अब बदल गया।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: Hey, this is the best thing. I love it and it's shopping. और शॉपिंग अगर गणपति की हो तो the most difficult part बप्पा को सेलेक्ट करना। भाई साहब बप्पा को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? बप्पा तो बप्पा है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि हमको उनका आइडल घर लेके जाना है। बप्पा इज गॉड भाई, पर ठीक है, इतने सारे लोग हैं, सबके अपने चॉइसेस हैं। इतना रेंज ऑफ आइडल्स कहाँ मिलेंगे? मिलेगा ना ज्योति गणपति 21 कफ रोड पे, जरूर जाइए। दे हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गणपति मूर्तिज, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग उनके जो आभूषण है, अलग अलग उनके कपड़े हैं, वस्त्र जो है, उनके आसन, उनके बैठने का तरीका, उनके फेस एक्सप्रेशन, ओ माई गॉड, सब एक से बढ़ के एक है। कंफ्यूज तो आप पक्का हो जाएंगे, पर फिर भी कोई ना कोई ऐसी होती है मूर्ति जहाँ पे आपका दिल रुक ही जाता है। यस, अब जब आप उस वहां पे जाएंगे 21 कफ रोड ज्योति गणपति पे, तो आपको इतनी सारी मूर्तियां दिखेंगी जिनका साइज 6 इंच से लेकर के 42 इंच तक है। सिंपल है, ट्रेडिशनल है, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है, कुछ में बहुत डिटेलिंग से काम किया हुआ है। तो जब आप सामने से देखेंगे तो आपको बेटर आइडिया लगेगा कि आपको अपने घर कौन से बप्पा लाने हैं। एंड बप्पा को आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, मुझे जहां तक लगता है, हमेशा से मुझे लगता है बप्पा आपको सेलेक्ट करते हैं। हम तो बस निमित्त मात्र हैं। बप्पा स्वयं ये चुनते हैं कि मुझे किसके घर जाना है। कौन सा रूप बप्पा का किसके घर जाएगा ये तो बप्पा ही जाने। हम तो बस उनकी आज्ञा मानते हैं और उनको अपने घर ले आते हैं, और उसके बाद सुख शांति समृद्धि और फेस्टिवल। गणपति इज अमेजिंग, राइट? तो जाइए 21 कफ रोड पे ज्योति गणपति जी के जो ये मूर्ति स्टॉल है, यहाँ पे अमेजिंग गणपति मूर्तियां जो है आपका इंतजार कर रही है। और एक सरप्राइज है, अगर आप वहां से कोई भी आइडल बाय करते हैं तो एक उसकी रिसीप्ट जो है ना, उसका फोटो हमें 9151-8963 पर शेयर करो, रिसीप्ट का फोटो। और भगवान तो आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद का साक्षात रूप हम आपको देंगे। एक पर्ल नेकलेस जीतने का मौका है आपके पास।
2: मेरा देवा देवों का देवता, माता देवा देवों का देवता, पैर रुकने ना, सर के झुकने ना देगा।
1: तो बप्पा भी घर आ रहे हैं, नेकलेस भी घर आ रहा है, तैयार होने का बोनस भी आपके पास। चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट जाओ जाओ जाओ। और मूर्तियों के लिए स्पेशली आपको 21 कफ रोड ही जाना है, जो कैंपबेल लेन से जस्ट 5 मिनट की दूरी पर है। डोंट वेस्ट योर टाइम, एनीबॉडीज टाइम, जल्दी जाओ।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, सो इफ यू रिमेम्बर हमने वर्ल्ड मैप की बात की थी, है ना? जो साइज हमें दिखता है एक्चुअली वो साइज है नहीं, जो है नहीं वो दिख रहा था, और हमेशा जो चीज वो दिखती है वो एक्चुअल साइज की नहीं होती है। उसी स्केल पर अगर हम गेम को और इंटरेस्टिंग बनाए तो आपको पता है पोलैंड में एक घर है कैरेट हाउस, या इसका कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, आई एम सॉरी, पर मुझे कैरेट कीरेट ऐसे कुछ बोलना है तो मैंने बोल दिया। अब जिसे ना दुनिया का सबसे पतला घर मानते हैं, पतला, थिनेस्ट, पतला, और कितना पतला, कुछ जगहों पर ये 72 मीटर्स वाइड है, जस्ट 72 मीटर्स, इतना पतला। मतलब ऑनेस्टली सिंगापुर के कुछ वार्डरोब के डोर्स भी इससे ज्यादा ब्रॉड हो सकते हैं, ये घर इतना पतला है। एंड ये हाउस दो बिल्डिंग्स के बीच एक नैरो गैप में बनाया गया था, और अंदर ना स्लीपिंग स्पेस, वर्क एरिया, एक टाइनी सा किचन, बाथरूम सब है एनी हाउस, सम हाउ तो ये फिट हो गया उसके अंदर। मतलब इस स्टोरी में ना वही वर्ल्ड मैप वाला थॉट मेरे दिमाग में आ गया। स्पेस को हम कैसे देखते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक कॉन्टिनेंट मैप पर छोटा लग सकता है, एक 72 मीटर गैप किसी को बेकार लग सकता है, और कोई उसमें अपना पूरा घर बना सकता है। नजरिए नजरिए की बात है ना, बिल्कुल पेनिस्टे को देखने वाला।

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
3: Hangout करेंगे पर थोड़ा हटके. ये है Masti Hangout RJ Mugdha के साथ.
4: और Singapore? इस बार का मस्ती हैंगआउट तो आपके पूरे सितंबर को प्लान पैक कर चुका है, पिटी पैक है ना. और अब ये शो पैकअप हो रहा है, मतलब आज का पैकअप हो रहा है जी. आज ना हमने बहुत सारी बातें करी. वीक का बीच वाला दिन वेंसडे, लोकल अपडेट्स, बॉलीवुड मसाला, स्ट्रेंज एंड ट्रू स्टोरीज, इन पर भी बात करी. वो बातें जो बस रेडियो पे अच्छी लगती हैं उनके बारे में बात करी. कुछ बातें अर्जेंट नहीं थी पर उनके बारे में बात करी. मतलब दिमाग तेज करना है, इंजॉय करना है, फन चाहिए लाइफ में, सब तरह की बातें आज की वेंसडे पे हो गई. एंड आई थिंक वेंसडे का बेस्ट पार्ट शायद यही है, वीक अप जो है ना वो हाफ वे क्रॉस हो चुका है और थोड़ा पेशेंस और अगर हम रखें तो बस फ्राइडे ज्यादा दूर है नहीं. एंड फ्राइडे को तो मैं आई जाती हूँ, तो जो लोग कम्यूटर्स है ना, जो कम्यूट कर रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, डिनर प्लान कर रहे हैं, हेडफोन्स लगा के बस एम ही कुछ एंजॉय कर रहे हैं, हमारा शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐप पर सब हो सकता है हमारे, तो आई होप कि उनको आज का मेरा शो पसंद आया होगा. कैसे पता लगेगा मुझे? आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9151893 पर. इफ आई मेड यू स्माइल, टिंग टिंग, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए. पैकअप करने से पहले तसल्ली अच्छी लगती है. तो मैं हूँ मुग्धा और आप सुन रहे थे मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मसी 24/7 लाइव. वेंसडे को हम यहीं पर सी ऑफ करते हैं और अगली मुलाकात शुक्रवार को होगी विद अ लॉट मोर एनर्जी, विद अमेजिंग वाइब, बहुत बहुत बहुत सारी बातें. तब तक के लिए टेक केयर सिंगापुर, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
0: Krishival nuts only on GTMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
3: GTMart, your personal grocer.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा, वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
3: It's a musty partner event.
4: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Fir how to serve super hit back to back gaane aayenge. Musty Music Cafe.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. Time to raise the bar. Mostly top 20 Bollywood chart busters of the week, full on Renuka style. Renuka. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज.
4: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है.
2: यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़.
5: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7. Josh
6: mein raho. Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. Musty Music Cafe.

रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स. Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। सुबह की शुरुआत हो थोड़ी

टेस्टी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल। जोश में रहो।
0: नॉट ऑल म्यूजिक इज लाउड, सम सॉन्ग्स जस्ट स्नीक इन, मेक्स यू स्माइल, हम अलोंग एंड फील गुड। वेलकम टू मस्ती अनप्लग्ड, योर इंडी अकूस्टिक प्लेग्राउंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: ना
4: करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, फिर हाउ टू सेव सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: ना पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज
1: मूड कर गया आज ये गाना सुनने का, तो मैंने कहा सबसे पहला तो यही ही आज लगाया जाएगा. हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, गुड इवनिंग. रेडियो मस्ती 24/7 पर स्वागत करती हुई मैं इस खूबसूरत सी शाम, वो भी वेंसडे वाली शाम. 9 सितंबर हो चुकी है दोस्तों. वक्त तो भागता हुआ जा रहा है, हम भी भागते हुए जा रहे हैं उसके साथ साथ कि चलो ठीक है, दोनों अब साथ साथ में भागते हैं. आई टेल यू सीरियसली, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ. मिडवीक ब्लूज शुरू हो चुका है, हमारे पास कोई ब्लूज नहीं है भाई. हम वेंसडे तक आते आते सब अपने अपने ब्लूज जो है ना वो थोड़े से पीछे छोड़ के आ जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि आगे का क्या प्लान है बाली के. विच इज अ गुड थिंग टू हैपन, राइट? वी कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्राइडेज. इनफैक्ट इस हफ्ते तो मुझे ऐसा कुछ फील ऐसी आ गई थी कि मंडे को ही मुझे लग रहा था कि फ्राइडे ला दो, नहीं जाना, घुसना नहीं है इस हफ्ते में. बट देन दैट इज विशफुल थिंकिंग. वी हैव टू गो थ्रू इट वॉट वी हैव टू गो थ्रू इट. आप देख रहे हो ज्ञान कैसे भर भर के बाहर आ रहा है. क्या करे, भरा हुआ था तो अब बाहर आ गया. अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो हमें करना है. बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है, बहुत सारी जो है बातें हैं जो करनी है भाई. पूरा सोशल मीडिया मतलब ब्लो अप हो गया इस एक पिक्चर की वजह से. एक नहीं, इनफैक्ट 3-4 पिक्चर्स इन्होंने रिलीज की है. अब किसने रिलीज किया, कौन सी फोटोज की बात कर रही हो, सब कुछ बताएंगे भाई. फिर टिकट विकेट देना है वो भी देंगे, और बाकी जितनी चीजें हो रही है सिंगापुर में सब कुछ करेंगे. लेकिन साथ में होने चाहिए कमाल के गाने. दैट्स वॉट जस्ट काइंड ऑफ चेरी ऑन द केक, है ना. वैसे चेरी ऑन द केक तो मैं हूँ. यू वुड एग्री विद मी ऑन दैट, है ना. आई लव यू. इसी बात के साथ चलो बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं. वैसे शुरू तो हो ही चुका है. ये अभी गाना चल रहा था तो मुझे लगा इसी मूड का थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ एक और गाना. नहीं, चलो हो ही जाए कुछ ही.

0: to Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रिनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
3: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी. महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026. आया देखो आया बप्पा मोरिया. हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा. 14th to 18th September, open field beside Holiday Inn, 2 Owen Road, Farrer Park. Maharashtra Mandal Singapore ka Ganesh Utsav 2026. Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: पांच बजकर हो चुके हैं 21 मिनट. रेडियो मस्ती 24/7 पर मिडवीक ब्लूज चल रहा है. मैं हूं अंतरा के साथ यहाँ पर. और भाई जिस पिक्चर की मैं बात कर रही थी विच वेंट वायरल एंड इट्स स्टिल लाइक everywhere on social media, everybody is talking about it. Of course, well, it is about Ranveer Singh and Deepika Padukone. And anyways, they both are like powerhouses, right? अब दोनों साथ में मिलकर अपने जो है छोटे powerhouse को लेकर, in fact, चौथे powerhouse को लेकर भी in a way, in this photo shoot which they posted. तो भाई कुछ ऐसा हुआ कि Ranveer Singh और Deepika Padukone, ऐसा तो आपको पता ही है that इन्होंने एक प्यारी सी बेटी इनकी है दुआ. And अब जो है चौथा मेंबर या चौथी मेंबर व्हाटएवर इट इज वो भी ऑन द वे है. सो ये प्रेगनेंसी फोटोशूट जो है उन्होंने बिल्कुल लॉन्च कर दी एकदम सडनली. इंस्टाग्राम तो पागल ही हो रहा है कि ये क्या क्या ही दिखा दिया. सो इट्स सो वेरी क्यूट राइट. द थिंग इज दैट बेबी दुआ जो है वो आई थिंक इफ यू हैव सीन द पिक्चर्स शी इज अ कॉपी ऑफ रणवीर लाइक छोटी रणवीर सिंह लग रही है वो. इतनी क्यूट लाइक टू द एक्सटेंट ऑफ कि दोनों के डेंटल शेप जो है सेम टू सेम. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर कंपेयरिंग रणवीर सिंह के बचपन की फोटो एंड दुआ की जो अभी ये रिसेंट वाली फोटोग्राफ जो है इन लोगों ने अपलोड की है. ओ माई गॉड दे आर लुकिंग. बस इतना ही फर्क है कि उसमें रणवीर सिंह के बचपन की फोटो में उनके बॉयकट बाल है एंड दुआ के दो छोटे छोटे प्यारे से पिगटेल्स है बट लाइक same set of teeth and like looks also the same like literally the same. So there are so many memes which are also floating kehte ki it seems that Deepika Padukone genes just kind of gave up and said just take everything from like Ranveer's genes and create this beautiful little pretty human being. It's just so very amazing and awesome. Bahut hi shandar photo shoot bhi. More than anything else, I think we all had a big smile on our faces because the photo shoot was so very amazing. Itna loving sa jo hai feel aaya and that's the beauty of photographs. Okay, jabhi bhi aap unko dekho चाहे वो आज की फोटोग्राफ हो चाहे वो हमारे पुराने टाइम की फोटोग्राफ हो इट जस्ट दैट इज द पर्पस ऑफ इट. इट शुड ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस और इट शुड ब्रिंग सम मेमोरी ऑन योर फेस. इट शुड डू समथिंग टू यू. इट शुड जस्ट मेक यू मूव मेक यू फील समथिंग. गुड वन रणवीर सिंह वेरी वेल डन. या एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू एंड योर फैमिली अगेन एंड राइटली सो. Yep, stay tuned to Radio Masti 24/7. I also have a lot to talk about, but then first of all, चलते हैं और कुछ अच्छे गाने सुनते हैं कि तेरे मेरे बीच में क्या है तुमको पता है ना.

0: ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: हांजी, इफ यू हैव नॉट ट्राइड कृषि वल नट्स, यू मस्ट गो एंड फिजिकली गो एंड गेट एंड बाय एंड ट्राई देम। कहां जा सकते हो भाई, 11th टू 25th ऑफ सितंबर, मिड ऑटम सेल जहां पे लग रहा है। जीजी मार्ट का आपको कियोस्क नंबर 12 पर मिल जाएगा, वेलोसिटी एट नवीना। भाई आप जाए वहां पर एंड जाकर एक बार कृषि वल के ये नट्स जो है वो जरूर जरूर ट्राई करें। दे आर नेचुरल, दे आर केमिकल फ्री, हलाल सर्टिफाइड नट्स है, सो इट्स समथिंग यू हैव टू गो फॉर। एक बार जाइए जरूर यहाँ पर जाकर, जीजी मार्ट के कृषि वल नट्स जरूर लेकर आइए।
5: बाजू
3: ट्रैफिक अपडेट।
4: And now let's find out ki traffic is going nuts or not. Let us, of course, together. 5:35 ho chuke hai studio clock mein. Heavy traffic is waqt aapko milenge on DKE towards Woodlands at Woodlands checkpoint exit. Heavy traffic ki khabar on CTE towards SLE between AMK Avenue 3 and Bradle Road. And vehicle breakdown milenge on Shares Avenue towards Marina Boulevard after Open Road. Avoid kare lane number 3. So well, ye tha is ghante ka traffic update. And isi ke saath saath chaliye badhte hain aage. And Arijit Singh ki awaaz mein जैकपॉट लग रहा है, एज इन फ्रॉम द साउंड ट्रैक ऑफ जैकपॉट। दिस इज समथिंग वेरी वेरी नाइस एंड रेनी।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: मैं कहती हूँ लड़की मतलब लड़की कह रही हूँ, कोई भी सेलिब्रिटी इनफैक्ट होना बड़ा ही मुश्किल काम होता है. क्योंकि आपकी हर बात को ऐसे निटपिक किया जाता है कि कुछ भी हो सकता है, आप पे केस भी हो सकता है. सो ऑफ कोर्स द सेलिब्रिटी हैव गॉट दिस रियली विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो वाला वैसा वाला फील जो है वो सेलिब्रिटीज को आते जाते हंसते गाते फील करना ही पड़ता है. सो चलिए बताती हूँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं आंतरा आपके और यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. लेकिन फिलहाल ब्लूज छाए हुए हैं नोरा फतेही के ऊपर, क्योंकि उन पर केस कर दिया गया है. हुआ कुछ ऐसा कि वो कहीं से ट्रैवल करते हुए बिल्कुल वापस आ रही थी एंड शी वाज सिटिंग एयरपोर्ट में. एंड वहां पर जो है एक पर्टिकुलर एयरलाइंस का एरोप्लेन जो है एयरक्राफ्ट सामने खड़ा हुआ था, उसको यूज करते हुए उस एयरक्राफ्ट में बैठते हुए उनको वापस आना था. नाउ दैट एयरक्राफ्ट वाज स्मॉल इन साइज, लाइक द रियली स्मॉल वंस, राइट. आप कभी छोटे से एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हो तो कुछ नहीं, इन्होंने एक रैंडम वीडियो बनाया अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी कि ये है मेरा एयरक्राफ्ट, एंड देन शोड द एयरक्राफ्ट एंड जस्ट इमेजिन दैट यू नो इट लुक्स लाइक एन एयरक्राफ्ट राइट आउट फ्रॉम द लेगो. मतलब वो उन्होंने कंपेयर ऐसे कर दिया कि इतना छोटा है कि ये तो लेगो का लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने अभी अमेजोन से ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया हुआ है. सो बेसिकली बहुत ही आप कहोगे ये तो बहुत ही रैंडम सी बात है, ना रैंडम सी बात पे रैंडम सा वीडियो बनाया और ये वीडियो इन्होंने ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया. नाउ अगेन नाउ कम्स दी सेलिब्रिटी एंगल. अब बिकॉज शी इज नोरा फतेही और उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया वो भी एक एयरलाइंस को लेकर, एयरलाइन वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. She has been sued for 3 crore over her toy plane का जो है ये comment. वो कुछ ऐसा उन्होंने कह दिया aviation और वो aircraft वालों ने कि मतलब हमारा मजाक उड़ाया कैसे तुमने, ये तो हमारी reputation को damage कर रहा है. बैठे बैठे कहते हैं ना मुसीबत को invite कर लेना online, कुछ ऐसे हो जाता है कभी कभी. सोचा भी नहीं होगा इन्होंने ऐसे. कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीडियोस बनाते हैं और रैंडमली ऐसे कहते हैं यार इससे तो मजे ही आ जाएंगे, कोई तो रिलेट कर ही पाएगा. एंड मे बी शी हैड नो इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग एनीवन्स रेपुटेशन इन दैट वीडियो. इट वाज जस्ट द प्लेन वाज लुकिंग सो स्मॉल दैट शी सेड दैट लुक्स लाइक आई हैव ऑर्डर्ड अ टॉय फ्रॉम अमेज़न, टॉय प्लेन फ्रॉम अमेज़न. एंड या नाउ शी हैज टू पे 3 crore फॉर दैट टॉय, वेरी एक्सपेंसिव वन मिस फतेही. फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे एंड धुरंधर के साउंडट्रैक के साथ. बिल्कुल तेनू शरारत करावा, शरारत भारी नहीं पड़ गई इनको.

0: What a beautiful song. क्या आप अपने बप्पा लेकर आ चुके हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर? मैं ये कह रही हूँ कि अगर अभी तक आपने बप्पा नहीं लेकर आए हो, या फिर जनरली भी, आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल नाउअडेज, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट गणेश चतुर्थी एंड एवरीथिंग, एंड हाउ वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट मैंने हाल ही में किसी को जो है एक बहुत ही प्यारे से गणपति जी जो है, जो कि मैं 21 कफ रोड से लेकर आई थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पज, आई वॉन्टेड टू गिफ्ट to someone, तो वो मैंने दिया है. एंड यू नो हाउ ब्यूटिफुल अ गिफ्ट ऑल्सो इट इज, बिकॉज जब मेरी फ्रेंड ने उसको ओपन किया, एंड एक्चुअली मैं किसी के हाउस वार्मिंग पार्टी पे गई हुई थी, सो दैट्स व्हाट आई टुक, एंड शी लिटरली हैड टीयर्स इन हर आईज दैट हाउ डिड यू नो दैट ओनली दिस वॉज मिसिंग, सडनली एवरी थिंग फेल इन टू प्लेस. एंड यू नो क्या होता है कि जब आप कोई किसी चीज को कोई बहुत सारी अप्रिसिएशन देता है, यू ऑल्सो यू नो फील लाइक कि चलो यू हैव डन समथिंग, मे बी समथिंग हैज गॉन रियली रियली राइट. इट इज अबाउट बप्पा आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड द मूर्ति वॉज सो ब्यूटिफुल कि मैं क्या ही बताऊँ आपको. एंड आई हैव बीन टेलिंग 21 कफ रोड पर ज्योति गणेश गणपति का जो शोरूम है, वहां पर आप जाओगे तो आप खुद ही देखकर यू विल हैव टू बिलीव योर आईज दैट देर इज सो मच ऑफ वैरायटी. द साइज, देर आर सेवरल साइजेस वेयर यू कैन चूज फ्रॉम. So if you have not done it, if you have not been there, we are saying just go and visit it to believe it. 21 Cuff Road पर जो है आप बिल्कुल आप जाइए. वहां से अगर आप कोई भी गणपति आइटल लेते हैं तो उसका रिसीट जो है हमें लेकर फोटोग्राफ उसकी भेज दीजिए, एंड हु नोज दैट ये जो पर्ल नेकलेस है वो भी आपके बप्पा के साथ साथ आपके घर में प्रवेश कर जाए दिस गणेश चतुर्थी और अदरवाइज एज वेल. हाँ जी, तो याद रहेगा ना आपको, बिल्कुल बप्पा को लाइए और साथ में मेक श्योर दैट आपका चांस ऑफ गेटिंग दैट पर्ल नेकलेस ऑल्सो इंश्योर्स.
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. Nacho, nacho, nacho, nacho, nacho. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: ना पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: गुड इवनिंग, नमस्ते. पहुंच चुके हैं 6 बजे के उस पार, 6:04 बाय द स्टूडियो क्लॉक टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज. रेडियो मस्ती 24/7, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ. इट्स वेंसडे ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पर चलिए थोड़ी सी हेज की भी बात हो जाए, बिकॉज एवरीबडी इज काइंड ऑफ कोर्स सिंगापुर में है, तो इस बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी. नाउ द हेज सिचुएशन इज स्टिल समथिंग टू कीप एन आई ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट NEA का एडवाइजरी, सिंगापुर का 24 RPSI ट्यूजडे शाम तक का वॉज बिटवीन 62 and 74, विच इज इन द मॉडरेट रेंज. बट फॉर वेंसडे द फोकस स्टिल आज कहा जा रहा है इट्स मॉडरेट एंड लो अनहेल्दी उसमें. एंड ये हेज कहां से है? NEA सेज मॉडरेट टू डेंस स्मोक प्लूम्स आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम fires in the southern and the central Sumatra and Kalimantan, with some smoke jo hai, which is drifting towards Singapore. Dry conditions in the parts of the region mean matlab risk jo hai may continue over the coming days as well. Iska matlab ye bhi nahi hai ki everybody needs to stay indoors. If the PSI remains moderate, normal activities jo hai wo continue kar sakti hai. But if it moves to the unhealthy range jo ki beech mein slightly hi sahi aane laga tha, that's 101 to 200 ke beech mein agar jata hai, healthy people should cut down prolonged strenuous outdoor exercise वगैरह. Children and the pregnant women and the elderly should minimize it, while people with chronic heart या lung conditions, उनको advice किया जा रहा है to avoid prolonged strenuous outside exertion kind of thing. One usual thing, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी रन के लिए निकल जाओ, देन NEA जो है रेकमेंड कर रहे हैं कि अपना जो है 1 hour का जो है PM 20 2.5 का जो रीडिंग है वो मतलब बेसिकली चेक करके ही बाहर निकले. सो सिंगापुर हेज है, नजर भी आ रहा है, बट पैनिक वाला अभी कोई सिचुएशन नहीं है. बट अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, विच आई एम श्योर दैट वी ऑल आर. कीप चेकिंग द लेटेस्ट रीडिंग, स्पेशली बिफोर यू आर काइंड ऑफ स्टेपिंग आउटसाइड. बाकी सारी चीजें एकदम नॉर्मल चलती रहनी चाहिए, बिकॉज जिंदगी का नाम ही है कि सब कुछ चलते रहना चाहिए, रुकना कुछ भी नहीं चाहिए. जैसे कि ये जो टिकट्स है, रुकने नहीं चाहिए मेरे हाथ में बिल्कुल भी, मजा लेके रुक जाए. तो मैं आती हूँ इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेकर कि कहां से कैसे किस तरह से आप इसको जीत सकते हो. तब तक के लिए आप ये गाने सुन के जरा फटाफट से वापस आना.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th टू 18th सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available, book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: Take a break, laugh a little and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: जब कोई ट्रेन चलता है तो उसके ऊपर सवार होना बनता है कि नहीं बनता है? जो अच्छे ट्रेन है तो डेफिनेटली बनता है। वन व्हिच हैज नॉट डन एनी हार्म, मतलब फॉर फन आल्सो। नहीं, 6:19 रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं अंतरा आपके साथ मिडवीक ब्लूज चल रहा है यहाँ पर। एंड भाई अभी जो है सोशल मीडिया पे 80s की पिक्चर्स, लाइक सब अपने AI जनरेटेड 80s के जो है पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं एंड इट्स जस्ट काइंड ऑफ रॉकिंग अप एवरीथिंग। एवरीबडी इज नाउ इन 80s एंड विच इज ऑलमोस्ट, लेट मी टेल यू, ठीक है, 90s वाला फील देने वाला। या उसमें थोड़ा और ब्राइट कलर एड कर दो तो टोटली 90s वाला लुक हो जाएगा। बट वेल एनीवेज, आई थिंक 80s के बाद 90s की बारी है एंड आई एम टोटल वेंसडे को तो मैं फुल ऑन 80% 90s वाले मोड में चली ही आती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन में मेरा शो होता है मस्ती 90s मिक्स टेप एवरी थर्सडे सुबह 11 बजे। यस, जस्ट इन केस आपने आज पहली बार ट्यून इन किया है, सो वेलकम, यू हैव चोजन द बेस्ट। बट ये एक बहुत ही अपार्ट फ्रॉम ऑल द अमेजिंग शोज वी डू, दैट्स ऑल्सो अनदर वन। सो वेल, coming back to another trend which is called bhajan jamming and I'm sure that you have heard about it. Maine Singapore mein aisa koi banda ya bandi nahi dekhi jisko latest trends ke bare mein nahi pata ho, aur kabhi kabhi aisa bhi hota hai ki pata hota hai lekin ab batana nahi chahte hain. Aap kehte ho acha, agar nahi pata hai to chalo main aapko bata deti hu. We have heard about it and I'm sure that aapne kafi sare videos wagera bhi dekhe honge. Have you seen backstage siblings ke videos? Bhai kafi popular है ये दोनों भाई बहन जो है, इतने ज्यादा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक ने अपने रेडियो शो मन की बात पे इनका जिक्र किया एंड ही एक्चुअली मेंशन्ड कि हाउ अमेजिंग इज दैट यू नो ये यंग लड़के लड़की जो है भाई बहन, दे आर ब्रिंगिंग भजन बैक इनटू लाइक इन अ फॉर्म दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। गेस व्हाट सिंगापुर, दे आर गोइंग टू बी हियर लाइव इन सिंगापुर, इजंट दैट अमेजिंग? डोंट यू want to be a part of it? And it's just not a bhajan baithak a kind of a thing, it is also, see, जो एम्बियंस है वो तो डिवाइन होगा ही होगा, बट उसी के साथ साथ प्योर साउथविक क्विजीन भी ये कह रहे हैं आप वहां पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। इट्स ब्यूटिफुली क्यूरेटेड एंड 26th of September, इस महीने की 26 तारीख को एंगेज थिएटर 2 सनटेक में ये शाम जो है वो बिल्कुल होने वाली है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो योर बुक योर टिकट्स सिस्टिक पर जाकर। अब मैं इनका नाम क्यों नहीं ले रही, कौन है ये बैक स्टेज सिबलिंग्स? नाम इसलिए नहीं ले रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप भी थोड़ा सा कुछ करो, हल्की सी मेहनत तो आपकी भी लगेगी। सो इफ यू वांट टू विन टिकट इनके जो है भजन जैमिंग सेशन के लिए एंड यू
1: want to be a part of it, you want to be a part of the trend, and you want to be just vilin ho jana chahte ho inke us mahol mein, then what you have to do is bataiye ye jo backstage siblings ki main baat kar rahi hu, ye jo bhai behan hai, inka नाम क्या है. गो गो फाइंड आउट. आई एम श्योर कई सारे लोगों तो ऑलरेडी पता होगा. 9158963 पर क्या नाम है ये बैक स्टेज सिबलिंग्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो भजन जामिंग लाइव इन सिंगापुर लाने वाले हैं 26th of September को एंगेज थिएटर टू सनटेक बे. गिव मी द नेम्स ऑफ द सिबलिंग्स एंड या स्टैंड अ चांस टू विन इस भजन जामिंग में एक हिस्सा बनने के लिए, है ना. आया ना मजा. जब टिकट जीतने की बात होती है सब एकदम तेज हो जाते हैं, विच इज गुड. I want you to do that. So go find out their names and send it to me. Farafat se, chalo chalo.
3: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर. भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची. गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक. 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
5: It's a Masti Partner event.

0: घूमने जाना है।
1: वापस आते हैं रियलिटी चेक अंतरा देती हुई 6:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन BKE टुवर्ड्स वुडलैंड्स आफ्टर मांडाई रोड। एक एक्सीडेंट की खबर है इन MCE टनल टुवर्ड्स ECP आफ्टर सेंट्रल बोलेवार्ड, अवॉइड करें लेन नंबर 3। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन PIE टुवर्ड्स ट्वास बिटवीन स्टीवंस एंड टोपायो। वेल ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। लेवल को थोड़ा अप कर देते हैं यहाँ पर इससे पहले कि मैं पूरी ही वापस से, क्योंकि मुझे छुट्टी चाहिए। मैं हर आई थिंक अब मेरे साथ वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि मुझे हर 2 हफ्ते बाद में तो मुझे छुट्टी पर जाना है। आई वांट अ हॉलिडे। नहीं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा यू नो पंप अप द बीट करते हैं अपने अपने दिमाग को, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आज जा नच ले, फिलहाल तो यही कर ले।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Aamir Khan wondered.
2: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
3: Kaise kiya ye?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome.
3: You're very good, yaar. Very well done.
1: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
9: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
10: Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
8: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
9: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
11: GG.
9: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे wholesome, healthy options.
11: Gigi Mart, your personal grocer.
12: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है Midweek Blues on Radio Masti 24/7. आओ, mood change कर change.
13: 6:37 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 अंतर आपके साथ मिडवीक न्यूज चल रहा है दोस्तों. ओके चलो भाई, एआई अब सिर्फ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है. अब एआई आपको पहलेगा कि सुनो ये भी तुम रहने दो, ये मैं कर देती हूँ. आइए इस नए लॉन्च के बारे में बात करें. सो मेटा जो हैज जस्ट लॉन्च्ड म्यूज. ओके, आपका अपना नया पर्सनल एआई एजेंट. नाउ दिस इज दिस वन इज डिजाइन्ड नॉट जस्ट टू चैट विद यू, जो कि आप दूसरों के साथ दूसरे एप्स के साथ तो कर ही रहे होंगे आई एम श्योर, बट टू एक्चुअली गेट थिंग्स डन ऑन योर बिहाफ. सो इमेजिन सेइंग कि मेरी ट्रिप प्लान कर दो, एंड म्यूज कैन हेल्प यू बुक द ट्रैवल. इट कैन सेंड ईमेल्स, मैनेज योर स्केड्यूल्स, fill your forms, shop online, and even continue working in the background after you have closed the app as well. So for some certain sensitive actions wagera, like actually sending that email ya fir making a purchase, it's designed to come back and bhai aapse approval mang hi le raha ki chalo theek hai yahan pe to tum approve kar hi do, baki to main tumhare liye sab kuch kar hi dunga. Itna dimag lagane ki zarurat nahi hai. Main keh rahi hu itne sare AI assistants ke baad dimag bacha kahan hai lagane ke liye. And anyways, here's where it gets really interesting. You can access Muse through its unka apna app or even through WhatsApp. So right now though, it's kind of rolling out only to adults United States mein, with Meta saying that AI glasses ka integration is also coming soon. Of course, pehla mera sawal tha, boss, agar AI ko meri email, calendar aur shopping tak access milega, ठीक है, ये प्राइवेसी सर इसका कुछ कर रहे हो आप? कि मतलब वो भी आपने कहा है कि नहीं उसमें मतलब आपको सभी चाहिए, अब आपको प्राइवेसी भी चाहिए इसके बाद. सो मेटा सेज दैट इवन म्यूज रन्स इनसाइड इट्स ओन सिक्योर वर्चुअल कंप्यूटर, यूजर्स डिसाइड व्हिच सर्विसेज इट कैन एक्सेस एंड परमिशंस कैन बी रिवोक्ड. एक सेपरेट सेफ्टी सिस्टम कॉल्ड सेंटिनल जो है विच ऑल्सो चेक्स एक्शंस बिफोर इट रीचेस द इंटरनेट, बट इट्स वेरी न्यू. And Reuters ki reports ki mani jaye that internal testing is also surfaced reliability and security ki concerns. Of course, what do you expect? So how comfortable people actually feel handing over real world ke tasks to an AI agent, that is going to be a big question. Now chatbot se AI agents tak ye shift kafi interesting ho hi raha hai. Jab se AI aaya hai sab kuch interesting ho raha hai. And somehow after all of these things, you know, suddenly I feel so proud
14: अपने आप पे मुझे ऐसी फक्र सी फीलिंग आती है ना. एंड यू ऑल शुड ऑल्सो फील प्राउड इफ यू आर अ मिलेनियल या फिर उस पहले के टाइम से आप बिल्कुल बिलोंग करते हो. वी ऑल सर्वाइव्ड विदाउट एआई कंप्लीटली एंड ऑल ऑन आवर ओन. आप हमें इस प्लैनेट के किसी भी कोने में डाल दो, हम सर्वाइव कर जाएंगे. हम कुछ ऐसा हमें बनाया गया है, समझ रहे हो आप. क्या ही बताएं. बढ़ते हैं आगे. लेट्स टेक अ म्यूजिकल ब्रेक एंड अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. डूड और कितना. बट देन आई थिंक या दिस इज गोना गो दिस वे एज़ वेल.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
3: Of course, we have to talk about it. Bhai, two successful editions ke baad, now they are coming with the edition 3. What are you saying? Seriously? Kab, kab? Batate hai na kab.
4: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
3: I was telling you, I have so many things to tell you. Seriously, Radio Basti 24/7 Antrop ke saath Midweek Blues chal raha hai. 6 bajkar ho chuke hai, 50 minute. Bhai, Amit Dhamelia ji ko kaun nahi janta hai? If you are in Singapore, aap hame jante hai. Of course, hame kaun nahi janta hai? And Amit Dhamelia ji as well. We have been associated with him for such a good long time that wo ab aisa Masti family ka hissa sa hi lagta hai. In fact, Masti Showcase mein he has always been one of the judges over there. So well, ye sari baatein ek taraf aur unka ye jo show hai, Ishq Sufiana, वो एक तरफ, क्या बेइंतहा खूबसूरत और क्या लवली टाइम वी ऑलवेज हैव व्हेन वी आर देयर इन दिस. सो दो एडिशंस जैसे मैं आपको बता रही थी कि सोल्ड आउट हमेशा से ही रहा है बिकॉज देयर इज अ वार्म्थ अबाउट हिज इश्क सूफियाना का ये जो शाम वो महफिल जो सजाते हैं जहां पर ही एंड हिज टीम ऑफ उनके साथ साथ जो गाते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, सच ब्यूटिफुल collection of songs and such amazing singers and that blend of Sufi in it. See, Sufi is not just a genre, it's a feeling as well at the same time. So, ye sari cheez jab ikhatta hokar ek jagah par hoti hai aur jab now third edition yahan pe aane wala hai, to fir make sure that you go and attend that. 26th of September, that's when it is happening. Saturday shaam ko 7 baje Auditorium Civil Service Club at Tissenson, that's where it is happening. टिकट जो है $60 एंड $80 की है, तो वो पे नाउ करके जो है आपको खरीदनी पड़ेगी. नंबर मैं आपको दे देती हूँ, 81382790. सी, सूफी फ्लेवर्स एंड सोलफुल वॉइसेस तो मिलेगा ही मिलेगा, एक लाइव सिंगिंग का भी बहुत ही अलग सा मैजिकल इफेक्ट होता है, दैट ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट. बट उसी के साथ साथ आई थिंक इस बार जो है थोड़ा सा और कुछ नए नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. अब वो क्या है वो जानने के लिए परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेजेंट्स इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया, ये तो जाकर अटेंड करना ही पड़ेगा. और बिल्कुल यहां से हमसे अगर टिकट्स चाहिए तो सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7, वो भी बताएंगे कैसे मिलेगा.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: सच कह रही हूँ, सबने हमारा मन एक्चुअली में इन सब चीजों से लगा के रखा है. अब ये सारी बातें ना हो तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, ये बताइए. 7 बजे के उस बार हम लोग पहुंच चुके हैं. गुड इवनिंग, नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7. अंतर आपके साथ मिडवीक ब्लूज चल रहा है. भाई 7 बज गए है ना, एक और दिन यू ही करते करते ऑलमोस्ट निकलता हुआ जा रहा है. बट लेट मी कम बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन नेहा कक्कर वर्सेस सुनिधि चौहान. बहुत टाइम से नेहा दीदी की तो कोई खबर ही नहीं आ रही थी. नेहा दीदी एक्चुअली सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है. नेहा दीदी जो है आजकल बहुत ज्यादा गाने भी नहीं गा रही है. क्या नेहा दीदी का वक्त हो चुका है? नहीं, नेहा दीदी इज आई एम श्योर वर्किंग एंड नेहा दीदी ने आई थिंक इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है कि नेहा दीदी कैन चिल आउट फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ एज वेल, ऐसा मुझे लगता है. बट लेट अस कम बैक टू व्हाट इज गोइंग ऑन. सो नेहा कक्कर हैज अपेरेंटली स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड म्यूजिक रियालिटी शोज. नाउ नेहा कक्कर रियालिटी शोज का कुछ ऐसा रिश्ता नाता है कि आप अगर कभी आपने देखा होगा ये जो म्यूजिक रियलिटी शोज है तो वो शी इज फेमस. उनके मीम्स वगैरह बनते हैं कि तो बात बात पे रो देती हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. आफ्टर सुनिधि चौहान जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया उनके करंट फॉर्मेट को, ये जो म्यूजिक रियलिटी शोज होते हैं, एज फेक एंड डॉक्टर्ड. नाउ आस्क्ड अबाउट सच क्लेम्स, नेहा कहते हैं कि अंगूर ना मिले तो खट्टे ही लगते हैं, विच ऑफ कोर्स मेनी इंटरप्रेट किया गया है, लेट मी पुट इट दैट वे, कि इट इज अ डिग एट सुनिधि चौहान. सो नेहा इंसिस्टेड कंटेस्टेंट्स जो है कंटेस्टेंट्स के स्ट्रगल्स कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड एंड सेड उनके जो इमोशनल रिएक्शंस दे आर ऑलवेज वेरी वेरी जेन्युइन. सुनिधि चौहान जो है शी हैड अर्लियर सेड रियलिटी शोज जो है शुड बी रियल एंड ऑनेस्ट एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई शी stepped away from judging. But well, देखो मेरा honest opinion अगर तो मैं दे दूंगी तो शायद काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. वो जानने के लिए मुझे आप separately पूछ सकते हो 9518963 पर. But well, you tell me, if given on a platform, right, Neha Kakkar and Sunidhi Chauhan, who will you opt for? Who do you think is a better singer as per your choice? है ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ. एंड सुनिधि चौहान व्हेन शी स्टेप्ड आउट उन्होंने बहुत ही सबको बता के ही स्टेप आउट किया था रियलिटी सिंगिंग के शोज से कि इतना झूठ तो हम नहीं ही बोल पाएंगे. एंड वी ऑल नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो विच गोज ऑन बिहाइंड इट, व्यूअरशिप टीआरपी बढ़ाने के लिए. सो वेल, अब नेहा दीदी का जो है कहना क्या सब सुनेंगे वो तो ऑफ कोर्स पता चल ही जाएगा इन सम टाइम. बट इफ आई एम गिवन अ चांस, हु डू यू थिंक आई वुड गो फॉर? नेहा कक्कर या सुनिधि चौहान? लाल के लिए खाएंगे अब नेक्स्ट इज या मेरी चॉइस का गाना, लेट्स गो.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Healthy खाओ, protein खाओ. Healthy खाओ, protein खाओ.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
3: शाम की चाय हो, office का break हो, या late night binge watching.
1: Healthy खाओ, protein खाओ. Healthy खाओ, protein खाओ.
2: Healthy munching का perfect partner. आप सिर्फ एक click दूर.
4: GG.
2: Crushable nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California. आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटिल एंड वाइब अ लॉट बिकॉज वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर। मिड वीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
6: I don't know how she does it, but then she does it so beautifully and so smoothly that I am amazingly impressed, okay? और मुझे impress करना उतना भी आसान नहीं है. Radio Masti 24/7, अंतर आपके साथ 7 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 20 मिनट. And भाई जब इस तरह की चीजों की बात हो जहाँ पे magic involved हो, and magic is basically पहले क्या कहते थे, हाथ की सफाई, but यहाँ पर हाथ की सफाई नहीं, I think using words and there are tips and tricks and techniques which this girl uses and she does it so very well. I am My mind, every single time I watch some video of hers, it's like completely blown away. And yes, I'm talking about Suhani Isha यहाँ पर. आज हमने एक video जो है upload किया हुआ है हमारे जो है social media पर. अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है, you should go and watch it. Okay, live television show पर she actually gets to know phone का password. All she does is कि आप ये सोचो, अच्छा अपने दिमाग में जोर जोर से सोचो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. And she's not even holding the phone. वो सिर्फ आई थिंक लास्ट डिजिट जो है वो डालती है अपने हाथ से, एंड द रेस्ट ऑफ इट शी आस्क द अदर पर्सन टू, अच्छा तुम 1 डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो. एंड इट्स यू गो लाइक व्हाट, ये कैसे हो गया. सो वेल, ये सारा कुछ करते हुए जो है वन सोल एस्केपेड्स एंड एपिक एनकाउंटर जो है ला रहे हैं सुहानी शाह लाइव इन सिंगापुर. यू हैव टू गो बुक योर टिकट्स भाई. अगर तो आपको फुल ऑन कंफर्मेशन चाहिए, सिस्टिक पर जाकर अपनी टिकट्स बुक कराए. यू कैन यूज द लिंक जो हमने अपने पोस्ट पे डाला हुआ है, सो उससे आपको प्रमोशनल कोड यूज करने को भी मिल जाएगा. अगर वो नहीं करना है, यू हैव टू, यू आर थिंकिंग कि अंतरा सवाल पूछो, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है. यू कैन यू नो आंसर दिस एंड विन. सो सुहानी शाह इज नोन फॉर ए मेंटलिज्म, बी मैजिक, या सी बोथ ऑफ देम. फटाफट से मुझे भेज दीजिए 9158963 पर, या फिर उस पोस्ट पर ही कमेंट करके बता सकते हैं कि ए बी या सी. इट्स मैजिक, इट्स मैजिक. सडनली ये बात करते करते ना मुझे यही गाना सोच और उसमें आ गया, मुझे लगा यही सुन लेते हैं साथ साथ में ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
7: Aamir Khan wondered.
8: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
7: Salman Khan wanted answers.
9: कैसे किया ये?
7: R Madhavan said.
10: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
7: And Boman Irani?
11: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
7: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
12: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
7: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow. One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
13: How do you know these things? Stop reading my mind.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: Saturday night ka plan? Party, concert, ya phir bhajan baithak. जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.
3: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी।

मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026। आया देखो आया बप्पा मोरिया। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेशोत्सव 2026।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: हाँ जी, तो पहले तो ये बताइए कि आप का रिलेशनशिप विथ योर व्हाटएवर करंट सीरीज वो कैसा चल रहा है. आई थिंक एवरी वेंसडे आई जस्ट काइंड ऑफ कीप अ चेक ऑन यू, राइट? दैट व्हाट्स अप, व्हाट आर यू वाचिंग नाउडेज. रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है बिट वीक ब्लूज. होते रहना चाहिए, यू शुड कीप इन टच विद दोज थिंग्स. तो भाई बताइए क्या क्या जो है, कौन कौन क्या क्या कौन सी सीरीज देख रहा है, व्हाट टू वॉच, व्हाट नॉट टू वॉच एज वेल, प्लीज टेल मी. मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी कोरियन ड्रामास के साथ मेरा कुछ मतलब अच्छा खासा वेल सेटल्ड सब मैं फील ही करने लगी थी कि चाइनीज ड्रामास दे हैव आल्सो स्टार्टेड कि नहीं नहीं अंतरा तुम हमें कैसे इग्नोर कर सकती हो. सो करंटली आई एम वाचिंग दिस रोमांटिक ड्रामा, ओके, इट्स कॉल्ड द अर्ली स्प्रिंग करके है. आई मीन दे आर डेफिनेटली गेटिंग वेरी क्रिएटिव, लेवलिंग इट अप इन जब रोमांस. एंड नाउ I am so involved in the character, especially the lead male jo character hai. अब उस लीड फीमेल कैरेक्टर को तो पता नहीं, लेकिन मेल कैरेक्टर के साथ मेरा बहुत अजीब सा एक रिश्ता जो है वो तैयार हो चुका है. एंड आई एम लाइक वाई डूड वाई एंड एवरीथिंग. सो द एक्टर इज अ गुड एक्टर, द स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, दे आर अ गुड स्टोरी राइटर. वो तभी पता चल जाता है व्हेन यू रियली गेट इन्वेस्टेड इन द स्टोरी एंड दे वॉन्ट यू टू बी इन्वेस्टेड इन इट. यू दे वॉन्ट यू टू गेट एंग्री विद देम एंड क्वेश्चन देम कि तुमने ऐसा क्यों किया. आई मतलब अल्दुनियन. Yeah, so Lunian naam hai isme in the story. And har episode mein ya to ye makeup kar rahe hote hain ya breakup kar rahe hote hain. And we go like, bhai bol de, baat kar le, seedhe seedhe baat kar hi sakte ho. But I am glad that sometimes is tarah ki thodi hatke cheeze jo hai, I like the genre of jo hai this romance and is tarah ki cheeze. So yeah, this is what I'm invested in. Main chota chota ek ek episode karke main dekhne ki koshish kar rahi hu. And definitely I thought that if you like other dusre languages ke dramas, then you can check it out. Baki to suggest aap hi karoge. Main ek aur cheez suggest kar sakti hu ki bhai ek bahut hi kamal, and this suggestion goes to all those people who are thinking ki you know bappa ka celebration aap apne ghar pe to karenge hi, but humko bahar jaake bhi karna hai. Ganesh Utsav 2026 ki baat kar rahi hu main. Maharashtra Mandal Singapore jo hai wo ye karne wale hain 14th to 18th September tak. Ye aisa माहौल बना दिया जाएगा. कहाँ पे? ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन 2 ओबन रोड फेरर पार्क, यहाँ की हम बात कर रहे हैं भाई. प्रोग्राम का स्केड्यूल क्या है? सुबह शाम देखो, एक तो आरती जो जरूर ही जरूर होगी, बट शाम को, हर शाम को इनफैक्ट 14 टू 18 तक कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, इवनिंग प्रेयर्स होंगी, एंड दिस लॉट विच इज गोइंग टू हैपन. ढोल ताशा ये तो आप मिस कर ही नहीं सकते हैं, है ना. अब महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का प्रोग्राम हो, वहां पे गणपति बप्पा की बात हो और उधर ढोल ताशा ना हो, कैसे हो सकता है? स्वागत ही मुझे लगता है कि ढोल ताशा के साथ बिल्कुल होना चाहिए एकदम. सो आप जरूर वहां पर एज अ कम्युनिटी, जस्ट नॉट बिकॉज लाइक एनीबडी कैन गो ओवर देयर, जस्ट लेट्स जस्ट ऑल गेट टुगेदर, राइट? एंड साथ में मिलकर जब बोलेंगे ना गणपति बाप्पा मोरया, जो फील ही अलग आएगी, है ना. सो याद रखोगे ना? ओके, चलो

0: होश में रहो।
1: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Take a break, laugh a little and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
3: हाँ जी, तो बस अब कुछ ऐसा है प्रोग्राम कि यहाँ से बोरिया बिस्तरा जो है जरा उठाया जाए और अब कल आपसे वापस से मिला जाए। जी हाँ, मैं बिग ब्लूज का सफर अंतरा के साथ इस वक्त इधर ही रैप अप होता है। मैं तो चली, हाँ हाँ मुझे पता है सब जा रहे हैं इस टाइम पे, जो है वो डिनर का टाइम हो रहा है, ये है वो है, मैं जा रही हूँ जिम, जिम का टाइम हो रहा है। या सो व्हाइल आई गो देयर एंड वर्क माई सेल्फ आउट, I will also walk myself out from here. कल मुलाकात होगी 90s के दशक में। जी हाँ, मस्ती 90s में एक स्टेप कल 11 बजे बिल्कुल मैं हाजिर हो जाऊंगी, बट उससे पहले से ही आप हाजिर हो जा सकते हो क्योंकि सुबह सुबह नुपुरवा आ जाएगी विद मस्ती मॉर्निंग्स एंड यस डेफिनेटली वी विल हैव अ रियली रियली गुड टाइम लाइक वी ऑलवेज डू। उसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड यस स्वीट ड्रीम्स। आज तो कर ही लेना है ना, कल का कल बात करेंगे, बाय बाय।

नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं समर हाजिर हूं एक बार फिर से लेकर बॉलीवुड के कलाकारों की कहानी लेजेंड्स फिर से ओनली ऑन रेडियो मसी, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। सिंगापुर लेजेंड्स में आज हम एक ऐसे लेजेंड की बात करने वाले हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्योंकि भाई अपनी फील्ड में आगे बढ़ते हुए स्टार को हम कहते हैं कि भाई देखो कितना चमकता हुआ सितारा है। कोई भी हो, जरूरी नहीं कि फिल्म के पर्दे पर ही दिखता हो। अब जब हम आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो ज्यादा चमकते हैं वो अलग ही नजर आ जाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत से फिल्म मेकर्स ऐसे हैं, लेकिन जब उन फिल्म मेकर की बात की जाती है जो एक पूरा सिनेमा दिखाते हैं, जो जिंदगी का हर एक इमोशन दिखाते हैं, तो ऐसे कुछ ही चमकदार सितारे नजर आते हैं। महबूब खान जैसे कि, यश चोपड़ा जैसे कि, शक्ति सामंत। और अगर आज के डायरेक्टर्स की बात की जाए तो जो नाम सबसे पहले मेरे जहन में आता है वो है संजय।

इश्क को, मोहब्बत को अगर सिल्वर स्क्रीन पर सही ढंग से दिखा सकता है कोई आज के जमाने में, तो सिर्फ संजय लीला भंसाली ही दिखा सकते हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन निर्देशकों में से एक संजय लीला भंसाली, जो फिल्म डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं और एक बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। इनकी फिल्मी जिंदगी की आज हम बात करेंगे इसी शो में, लेकिन पहले सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ खूबसूरत नगमे जो इस शो को और खूबसूरत बना देंगे। आइए सुनते हैं और रहिएगा मेरे साथ, कुछ कहना चाहें, अपनी पसंद के गाने जो संजय लीला भंसाली की फिल्मों से हो सुनना चाहें तो हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। स्टे कनेक्टेड।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: The Masti Partner Event.
0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
2: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स पर से मेरे यानी समर के साथ। आज हम आपको फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की कहानी सुना रहे हैं। 24 फरवरी 1963 को मुंबई में इनका जन्म हुआ, जहां ये एक छोटी सी चौल में रहा करते थे। हालांकि इनके पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर ही थे, लेकिन उनकी फिल्में चली नहीं और वो शराब की गिरफ्त में आ गए, उसके आदि हो गए। भंसाली जब अपने बचपन को याद करते हैं तो वो बताते हैं कि मेरे जैसा बचपन किसी का नहीं होना चाहिए। इनके पिता शराब के इतने आदि हो गए थे कि कोई भी प्रोड्यूसर इनसे मिलने आता था तो वो उनसे मिलने तक की हालत में नहीं होते थे। इन सब बातों और हालात ने संजय को गंभीर इंसान बना दिया। इन हालातों के चलते पैसों की कमी आ गई और ये एक छोटे से चौल में रहने लगे। इनकी एक छोटी बहन भी है और इनकी माँ, जिनका नाम है लीला भंसाली। इनके पिताजी ने इन्हें मुगले आजम 18 बार दिखाई और कहा कि मैं ऐसी ही एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। हालांकि इनके पिताजी तो ऐसी फिल्में नहीं बना पाए, लेकिन आज जो भंसाली इतनी जबरदस्त और इतनी ग्रैंड फिल्में बनाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनके पिताजी का सपना जरूर नजर आता है। मतलब एक ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहेगा रेडियो 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything else. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
8: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। यह है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव हिंदी रेडियो स्टेशन, नाम है इसका रेडियो मस्ती। संजय लीला भंसाली का आज हम बात कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली बचपन से ही एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त और राज कपूर साहब के बड़े फैन रहे हैं। इन दोनों डायरेक्टर्स का दिखाया हुआ सिनेमा इन्हें बहुत अच्छा लगता था और बचपन से ही इनकी तरह एक बड़ा फिल्म मेकर बनना चाहते थे, तो इसके लिए इन्होंने स्कूलिंग के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे ज्वाइन कर लिया और यहाँ इन्होंने एडिटिंग में डिप्लोमा किया। यहाँ से निकलने के बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। और ये किसके असिस्टेंट बने? फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के। इनके साथ इन्होंने दो फिल्मों में काम किया और देखा जाए तो दोनों की दोनों बेहद कमाल की हिट रहीं। पहली फिल्म थी जो 1989 में आई, परिंदा, जिसके लिए जैकी श्रॉफ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसमें अनिल कपूर भी थे। संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म में अनिल कपूर पर एक गाना भी शूट किया था। कौन सा?

संजय लीला भंसाली करवा दिया। इसके बाद इन्हें इसी नाम से जाना जाता है आज तक। इसके बाद म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, इसमें भी वो विधु विनोद चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। विधु विनोद चोपड़ा एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। तो विधु विनोद चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे गरीब, जिसमें बॉबी देओल लीड रोल में थे, और इस फिल्म के लिए उन्होंने संजय से कहा कि तुम इसे डायरेक्ट करो, लेकिन संजय ने तब मना कर दिया। तो इस फिल्म के बाद संजय विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन से अलग हो गए, यानी इसके बाद उन्होंने कभी भी विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम नहीं किया। वेल, अभी लेते हैं फिर से एक और ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे होगी मुलाकात। ब्रेक में इतने बेहतरीन नगमे आपके लिए कि आप चाहेंगे कि यार थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लो। तो ये ब्रेक नाभी के लिए, और अगर आप अपनी पसंद के कोई गाने सुनना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर आपको बताना होगा। हम इंतजार करेंगे। स्टे कनेक्टेड।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

संजय लीला भंसाली स्पेशल शो है आज। मैं समर हूँ आपके साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर कर रहा हूँ एक बार फिर से आपका स्वागत। ब्रेक से पहले जैसे कि हमने बात की थी कि संजय लीला भंसाली ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से एडिटिंग में डिप्लोमा किया, लेकिन दरअसल ये दूसरे साल में बीच में ही छोड़कर आ गए थे, पूरा कोर्स नहीं किया था। हुआ यूं कि एडिटिंग स्टूडेंट्स को एक एक डायरेक्टर मिलने वाला था जिनकी ये फिल्म एडिट करने वाले थे, तो संजय लीला भंसाली को मिले दिलीप घोष जिनकी फिल्म इन्हें एडिट करनी थी, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई, बात बनी नहीं। दिलीप घोष ने तो मना कर दिया कि ये मेरी फिल्म एडिट नहीं करेगा, तो संजय ने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे कोई दूसरा डायरेक्टर दे दीजिए जिसकी मैं फिल्म एडिट करूं, मैं इसकी एडिट नहीं करना चाहता। लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि मैंने तो तुम्हें दिलीप के साथ काम करने का मौका दिया था लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। तो जी इसी बात पर संजय ने प्रिंसिपल के खिलाफ केस कर दिया, लेकिन वो केस हार गए, और जब केस हार गए तो उन्होंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, या यूं कहूं कि छोड़ना पड़ा, और एडिटिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो मुंबई आ गए। लेकिन जब वो इंस्टीट्यूट से निकल रहे थे तो उन्होंने खुद से बड़ा वादा किया था कि जितने भी एडिटिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अभी, उन सबसे पहले मैं फिल्म बनाऊंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। भंसाली साहब ने इतनी जबरदस्त फिल्में बनाई हैं कि इन्हें अब तक 4 नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के मिल चुके हैं और 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। तो इन कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ एक और ब्रेक ले लेते हैं, एक और ब्रेक जिसमें आप सुनेंगे भंसाली जी की फिल्मों के कुछ और बेहतरीन धमाकेदार नगमे। रेडियो 24/7 लाइव पर मैं हूं समर आपके साथ।

वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव। मैं समर हूं आपके साथ और ये शो है लेजेंड्स फिर से, जहां आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की। संजय लीला भंसाली ने अब तक 8 फिल्में डायरेक्ट की हैं और सारी की सारी हिट है, बड़ी हिट है। जब इन्होंने विधु विनोद चोपड़ा को मना कर दिया था फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, तो इसके बाद इन्होंने सलमान खान को लेकर एक फिल्म बनाई, खामोशी द म्यूजिकल। ये फिल्म हालांकि इतनी चली नहीं, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक इतना जबरदस्त हिट हुआ कि जिसका कोई जवाब नहीं। हर गाना

क्या होता है कि फिल्म की स्टोरी में कभी कभी छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती, लेकिन संजय लीला भंसाली ने अपनी पहली फिल्म में बता दिया था कि वो हैं क्या चीज। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बनाई जो 1999 में आई। फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम।

और 99 में रिलीज हुई तमाम फिल्मों में से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनी। लेकिन इस फिल्म का आइडिया संजय लीला भंसाले के दिमाग में कहां से आया, इसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, रेडियो मस्ती।

0: आइए, अभी का इंतजार कर रहा था मैं समर रेडियो 24/7 लाइव पर। आज महफिल है संजय लीला भंसाली की फिल्मों की, उनकी कहानी की। लेजेंड्स फिर से आप सुन रहे हैं मेरे साथ, और हम बात कर रहे थे संजय लीला भंसाली के उस शाहकार का, उस फिल्म का जिसने धमाल मचा दिया था। मैं बात करूं हम दिल दे चुके सनम की, ये आइडिया कैसे आया इस फिल्म का। एक बार संजय लीला भंसाली म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार से मिले। इस्माइल दरबार ने उन्हें अपने कुछ गाने सुनाए जो ये रिकॉर्ड कर चुके थे। उसमें गाना था हम दिल दे चुके सनम। ये गाना जैसे ही भंसाली साहब ने सुना, उन्होंने तुरंत इस्माइल से कहा कि यार इस टाइटल पर मैं एक फिल्म बनाऊंगा। एक्चुअली फिल्म की स्टोरी तो वो खुद ही लिखते हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा टाइटल नहीं मिल रहा था, तो इस गाने से टाइटल मिल गया। इस गाने के बाद इस्माइल दरबार ने उन्हें दूसरा गाना सुनाया जो ऑलरेडी केके की आवाज में वो रिकॉर्ड कर चुके थे। गाना था तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही,
1: तड़प तड़प।

0: ये गाना जब वो सुन रहे थे तो भंसाली साहब का क्या हाल हुआ, ये आप सुनिए खुद इस्माइल दरबार की जुबानी।
1: तड़प तड़प के जो गाना था वो भी एज इट इज में के की आवाज में रिकॉर्ड कर चुका था। एक दिन ऐसे ही मैंने संजय को फोन करके बोला कि मैं एक गाना आपको सुनाना चाहता हूँ। तो संजय ने मुझसे कहा कि ठीक है आप आ जाइए। तो मैं फटाफट अपना कैनेटिक लेके संजय के पास गया और उनको वो गाना सुनाया। तो संजय ने मेरे ख्याल से कुछ 9 बार गाना सुना उस रोज तड़प तड़प के, और वो बहुत रोया उस रोज जब वो पलटा मेरी तरफ ना, क्योंकि उसकी पीठ थी, मैं पीछे बैठा हुआ था। जब वो पलटा तो एकदम मतलब रो रो के उसका बुरा हाल था। और उस रोज उसने कहा कि आज मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई, अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ इंटरवल करना है, कहाँ फिल्म को एंड करना है।
0: तो सिंगापुर इस तरह से इन दोनों गानों से भंसाली को एक तो फिल्म का टाइटल मिल गया और दूसरा उन्हें मिला कि कहाँ फिल्म का इंटरवल रखना है और कहाँ फिल्म को पूरा करना है। ये फिल्म संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी और इस फिल्म ने दोनों को कामयाबी की उस ऊंचाई पर ला खड़ा किया जहाँ हर कोई पहुँचना चाहता है।

फिर इसके बाद महज 2 साल बाद ही एक बार फिर संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई जिसका नाम था देवदास। आज हम संजय लीला भंसाली को एक अच्छे फिल्म मेकर और कमाल की म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन एक और खास चीज है जिसके लिए भी जानते हैं और वो है उनकी फिल्मों के बड़े बड़े सेट्स, लार्जर देन लाइफ सेट्स बनाते हैं वो। ऐसे सेट्स जिन्हें देखने के बाद यकीन ही नहीं आता कि कोई बनाए हुए सेट्स, इतने रियल लगते हैं वो। बड़े बड़े सेट्स का पहला नमूना देखने को मिला फिल्म देवदास में। संजय लीला भंसाली से पहले भी कई लोग देवदास बना चुके थे और खास तौर से बिमल रॉय की देवदास जिसमें दिलीप कुमार साहब ने काम किया था, लेकिन संजय लीला भंसाली की देवदास ने भी वो मुकाम हासिल किया कि लोग बस देखते।

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
3: Aap sun rahe hai, Samar ke saath, Legends phir se.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, दैट इज रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव, और मैं हूं समर आपके साथ। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे देवदास की। इस फिल्म में देवदास का रोल किया था शाहरुख खान ने। शाहरुख के साथ इनकी ये पहली फिल्म थी, ऐश्वर्या के साथ ये इनकी दूसरी फिल्म थी। माधुरी और जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में थे, और समीर अंजान के बोल और इस्माइल दरबार की म्यूजिक ने एक बार फिर से धमाका मचा डाला।

फिल्म में देवदास और पारो के बीच कमाल की केमिस्ट्री दिखाई है इस रोमांटिक गाने में भंसाली साहब ने। संजय लीला भंसाली की फिल्मों में न सिर्फ सेट्स महंगे होते हैं बल्कि एक्टर्स की जो कॉस्ट्यूम होती है वो भी काफी महंगी होती है, उस पर बहुत काम किया गया होता है। अब जैसे इस फिल्म में जो लहंगा माधुरी ने पहना था वो करीब 10 लाख रुपए का था उस जमाने में, यानी 2000 में 10 लाख की कीमत काफी ज्यादा थी। और वैसे भी किसी फिल्म के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करना ये भी किसी पैशन से कम नहीं है जो सिर्फ संजय लीला भंसाली में है। इस फिल्म को उस दशक की टॉप 10 फिल्मों में शामिल किया गया। तो साहब एक काम करते हैं, अब एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे फिल्म बाजीराव मस्तानी की, जिसको संजय लीला भंसाली ने 15 साल पहले लिख लिया था लेकिन इसे बनाया 15 साल बाद।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
1: Aamir Khan wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
4: कैसे किया ये?
1: R. Madhavan said.
5: Awesome.
4: You're very good, yaar. Very well done.
1: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, फिर से मेरे यानी आपके अपने समर के साथ। ब्रेक से पहले की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था कि संजय लीला भंसाली ने वो फिल्म बनाई, 15 साल बाद बनाई, जो उन्होंने उसी वक्त यानी 15 साल पहले लिख ली थी विद डायलॉग्स, और इस फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म का आइडिया संजय लीला भंसाली को 15 साल पहले ही आ गया था, लेकिन हर बार किसी वजह से वो फिल्म नहीं बना पाते थे। ज्यादातर रीजन स्टार कास्ट का होता था। वैसे ये फिल्म पहले कमाल अमरोही भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो भी बना नहीं पाए इसे। उसके बाद मनमोहन देसाई साहब ने भी इसे ट्राई किया, वो भी बनाना चाहते थे फिल्म, लेकिन वो भी बना नहीं पाए। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया जब ये फिल्म पर्दे पर आई और संजय लीला भंसाली की कल्पना साकार हो गई। रणवीर सिंह बने बाजीराव और दीपिका पादुकोण बनी मस्तानी। बाजीराव मस्तानी फिल्म बनाने का सपना इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के साथ पूरा हुआ।

इस फिल्म का म्यूजिक भंसाली साहब ने दिया, हर गाना लाजवाब था। रणवीर सिंह को लेकर संजय भंसाली ने 3 फिल्में बनाई हैं अभी तक, और आप देखिए हर फिल्म में एक गाना पर्टिकुलर रणवीर सिंह पर होता ही है। अब इस फिल्म में मल्हारी गाना जो है वो रणवीर सिंह पर ही पिक्चराइज है।

जो फट लावली। इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जब कोई फिल्म बना रहे होते हैं तो एक बड़ी ही अजीब पशुपेश में पड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है, वो फिल्म बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, मतलब बहुत ही कश्मकश में, और शायद ये एंग्जाइटी की वजह से होता है, लेकिन ऐसा उनके साथ होता है। भाई ये नर्वसनेस मुझे ऐसा लगता है कि हर परफॉर्मर के साथ होती है जब वो स्टेज पर जाने लगता है या जब वो कोई नया काम शुरू करता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे साथ तो ये परफॉर्मेंस फोबिया है भाई साहब, मतलब होगा, बड़े लोगों के साथ होता होगा। ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप को बड़ा कह रहा हूँ, लेकिन होता है। अब देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक सक्सेसफुल

वेलकम सिंगापुर, मैं हूँ जमर और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। अब हमारा ये जो शो है आज का लेजेंड्स फिर से, इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम संजय लीला भंसाली से आपका तारुफ करा रहे थे, उनकी फिल्मों के बारे में आपको बता रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि बड़े सेट्स और बड़ी कास्ट और जबरदस्त म्यूजिक, ये पहचान होती है संजय लीला भंसाली की फिल्मों की। संजय लीला भंसाली ने अभी तक सिर्फ 9 फिल्में बनाई और हम चाहते हैं कि वो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनाए, लेकिन सिर्फ अगर 9 फिल्मों की बात की जाए तो ये सभी सुपर डुपर हिट हैं। अब जो मेरे जहन में फिल्म आ रही है उसका नाम है गोलियों की रासलीला, रामलीला। हम दिल दे चुके सनम की जगह उस वक्त भंसाली साहब यही फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर ये फिल्म उन्होंने बनाई 2013 में, और जैसे कि एक परंपरा चल पड़ी है, संजय लीला भंसाली जो फिल्म बनाएंगे वो हिट होगी, ये फिल्म भी जबरदस्त हिट हो गई।

संजय लीला भंसाली कहते हैं कि वो अपने स्टार कास्ट को फ्रीडम देते हैं, यानी एक्टर्स को फ्री रखते हैं कि भैया जो चाहे जैसे चाहे इम्प्रोवाइज कर सकते हो आप। रणवीर सिंह के बारे में वो कहते हैं कि रणवीर में जैसे सुबह 6 से 9 की एनर्जी होती है, उतनी ही एनर्जी वो रात के 10 बजे भी रखते हैं। ही इज फुल ऑफ एनर्जी। तो संजय कहते हैं कि मुझे तो उसको बार बार समझाना पड़ता है कि एनर्जी को सेव करके रखा कर यार भाई, और उसको संभालने के चक्कर में मेरी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाती है। तो चलिए अभी आज की आखिरी मुलाकात बाकी है, लेजेंड फिर से मैं समर आपसे फिर मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये गाने आपसे मिलेंगे। ये गाने आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें आकर जरूर बताइएगा। कहाँ? अरे हमारे फेसबुक पेज पर भैया। आइए सिंगापुर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम कौन? अरे भैया मेरा नाम तो समर है और ये अंतरा भी है हमारे साथ, मतलब होंगी आसपास, अभी दिख नहीं रही मुझे।

0: is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
2: It's a Masti Partner event.
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
6: जीजी
5: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
6: GG Mart, your personal grocer.

बॉलीवुड की दुनिया के लाजवाब सितारों के इस बेहतरीन शो में एक बार फिर समर कर रहा है आपका स्वागत। आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती। आज का शो था लेजेंडरी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के नाम। भंसाली साहब की फिल्मों को बड़े सेट्स की वजह से, ब्यूटीफुल कलर्स की वजह से, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी की वजह से, जबरदस्त म्यूजिक की वजह से जाना जाता है और उनके सेट्स वाकई ऐसे होते हैं जैसे कोई महल हो असली में। अब 2018 में जो इनकी फिल्म आई थी पद्मावत, उसके बारे में हम बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। अब जाते जाते आखिरी मुलाकात है तो उसका भी जिक्र कर देते हैं। तो इस फिल्म के सेट पर, सिर्फ सेट पर 35 करोड़ रुपए खर्चे थे संजय लीला भंसाली ने। भैया इतने बजट में तो फिल्में बन जाती हैं, लेकिन भंसाली साहब का ये पैशन है और जब तक कि उनकी परमिशन ना मिल जाए सेट कंप्लीट नहीं होता। और खास बात यह कि जिस भी सेट का आखिरी सीन होता है ना, संजय लीला भंसाली उस सीन के बाद उस सेट पर अकेले बैठे रहते हैं 10-15 मिनट तक और वहां और कोई नहीं होता और वो किसी को अलाउ नहीं करते, बस उस सेट में जी लेना चाहते हैं कुछ वक्त अपने साथ। संजय बताते हैं कि मुझे सेट से बहुत प्यार है तो मैं सेट को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए पहले निहारता हूं और फिर वहां से चला जाता हूं, उसके बाद सेट तोड़ा जाता है। इसके अलावा संजय कहते हैं कि मैं अपनी फिल्मों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो भैया संजय जी, आपकी फिल्मों से हम भी प्यार करते हैं, सारी दुनिया प्यार करती है और ये प्यार यूं ही बना रहेगा। आप ऐसे ही बेहतरीन फिल्में देते रहिए। फिलहाल हमारे जाने का वक्त है, आप भी चाहे तो हमें प्यार दे सकते हैं। हमारा नाम है समर और जाते जाते हम कुछ बात कहना चाहते हैं, उसे जरा गौर से सुन लीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। क्या? अरे भैया सिंगापुर अपना ख्याल रखेगा, अपने अपनों का ख्याल रखेगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखेगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा और किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाइएगा और दुआओं में याद मुझे भी रखिएगा। हाँ, कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद रखें और मुझे तो आपको याद करना ही है, क्योंकि मैं हूँ समर। आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Raat akeli hai, aankhein bhi hain. Raat akeli hai to kya? Hum to.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a musty partner event.
2: Raat akeli hai.
3: Raat akeli hai to kya? Hum to aap

0: सिमरन तू आ गई, मैनू तो लग गया तू आना ही नहीं। नाउ चक दे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में
4: रहो। ओ सत्ते, तुम भी थोड़ी जी तुम भी पा दे।

0: कसम मानू खाने
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
3: रात।

0: As you say, sunshine.
1: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन words?
0: जहाँ से मैं आया हूँ.
1: Oh, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
0: प्यार.
1: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

your voice. I am singing song. Soup song. Flop

यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूं। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: इस दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज बिकती है।
1: ये क्या कह रहे हैं आप?
0: लेकिन क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं? खरीदारी करने के बाद अगर खरीदार को यह मालूम पड़े कि वो ठग लिया गया है,

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

बार कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है? और कुछ क्यों नहीं चुराता?

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।
1: श्री रामचंद्र आश्रित पारिजात है,

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: सबसे ज्यादा डर तब लगता है कि आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और अचानक से आपकी फैमिली से ना वीडियो कॉल आ जाए। और आपको पता है ना, रैंडम कॉल्स कितने डराने वाले होते हैं। हाँ, मतलब मेरे घर वाले तो मुझे तुरंत मेरे लुक्स पर भी टॉन्ट मार देते हैं। उसके बाद पूछ लेते हैं कि जरा दिखाना कहाँ पर हो, जरा दिखाना क्या कर रही हो। अरे भाई, कैसे दिखाई आपको। हाँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाय द टाइम ना वीडियो कॉल्स और वीडियो चैटिंग से ना फोबिया सा हो गया है। सिर्फ ऑडियो कॉल्स अलाउड, और उससे भी अच्छा आप ऑडियो मैसेज ड्रॉप करके गायब हो जाओ। बेस्ट तरीका है, जब भी मुझे फीसिबल होगा मैं रिप्लाई कर दूंगी। प्राइवेसी का सबसे बढ़िया तरीका यही लगता है मुझे, और मैं भी दूसरों को मैसेज करके ड्रॉप करके भाग जाना ही प्रेफर करती हूँ। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नूपुर भागते भूखते बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए आ चुकी है। एंड फेस्टिव मोड ऑन हो चुका है सिंगापुर। क्या कुछ चल रहा है अक्रॉस द आइलैंड बताऊंगी मेरी जान। डोंट गो एनीवेयर।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: आपका एक ख्वाब था कि बचपन से लेकर बड़े होने तक आप कभी ना कभी एक मैजिक शो में जाओगे, लेकिन किसको पता था वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा कुछ अच्छे के लिए। आप ऐसे मैजिकल शो में जाओगे जिसमें जो मैजिशियन है यानी जो मेंटलिस्ट है वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगा लेंगे। आहा, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह स्पेलबाउंड शो, अ मेंटलिज्म एक्सपीरियंस। इंग्लिश में ये शो होने वाला है, तो आप फुल फैमिली जाइए, एंजॉय कीजिए, अपने और दोस्तों को भी लेके जाइए। 20th September 6 PM ऑनवर्ड्स, क्रेटा अय्यर पीपल्स थिएटर, 308 क्रेटा अय्यर रोड, सिंगापुर। टिकट्स अवेलेबल हैं सिस्टिक सिंगापुर पे। सो मतलब यहाँ जाने के साथ ना वो जो मैजिक का लेवल अप हो चुका है ना वो आप कंप्लीटली एक्सपीरियंस करने वाले हैं, मतलब सरप्राइजेस। हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।
3: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on GTmartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GTmart, your personal grocer.
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 PM ऑनवर्ड्स CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: क्या बात है, इंडिया नहीं जा रहे? अरे कोई बात नहीं, आपको इंडिया की याद ही नहीं आने देंगे। महाराष्ट्र का, वो कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ गणपति जी का सेलिब्रेशन आ चुका है सिंगापुर। हाँ जी, महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर गणेश उत्सव 2026 में अगर आप पहुंचेंगे तो 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक 4 दिन के ये प्रोग्राम्स आपको मिस नहीं करने हैं। वेन्यू रहेगा ओपन फील्ड बिसाइड हॉलीडे इन 2 ओवन रोड फैरर पार्क सिंगापुर। एनीवेज, मंडे यानी 14 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन क्या प्रोग्राम है बता देती हूँ। सुबह 9 बजे गणेश प्रतिस्थापना रहेगी, शाम को 8 बजे इवनिंग प्रेयर रहेगा और ट्यूसडे यानी 15 सितंबर 8 AM मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग 8 PM ऑनवर्ड्स प्रेयर रहेगा। वेंसडे 16 सितंबर को 8 AM ऑनवर्ड्स मॉर्निंग प्रेयर, 8 PM ऑनवर्ड्स इवनिंग प्रेयर। थर्सडे 17 सितंबर 8 AM ऑनवर्ड्स अथर्वशीर्ष पठन रहेगा, बहुत ही खास रहेगा, आप पहुंचेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। 9 AM मॉर्निंग प्रेयर रहेगा, 8 PM इवनिंग प्रेयर रहेगा। फ्राइडे 18 सितंबर 8 AM ऑनवर्ड्स मॉर्निंग प्रेयर रहेगा, 5 PM जे उत्तम रहेगा, 8 PM उत्तर पूजा रहेगा और हर शाम इवनिंग प्रेयर के बाद ढोल ताशे रहेंगे। हाँ, और कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी एवरी डे रहेगा 7 PM ऑनवर्ड्स। आई थिंक आपको जाना चाहिए, पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और ऑफकोर्स यार गणपति जी के साथ धूमधाम से एंजॉय करना चाहिए। आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: रहो। देखो एक टाइम था जब आप सोशल मीडिया पर सच नहीं बोलते थे, तब आपके फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आप जितना सच बोलोगे, जितना रियलिटी चेक दोगे, लोग उतना ज्यादा आपको पसंद करने लगेंगे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि ये है कि आप जितना रियलिटी दिखाओगे, जितना ज्यादा रियलिटी दिखाओगे, लोग उतने आपके दीवाने हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अंशुला कपूर, हाँ जी, यानी अपनी बोनी कपूर जी की बड़ी बेटी, राइट? तो ये थोड़ी चबी सी हैं और फिर भी ये बहुत ज्यादा वीडियोज डालती हैं। सो बॉडी शेमिंग इनके सोशल मीडिया का एक ऐसा टूल बन गया है जिसका कमेंट सेक्शन भरा रहता है। सो रिसेंटली इन्होंने एक ऐसी वीडियो डाली कि लड़के तो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं पर लड़कियां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट कर रही हैं। तो इन्होंने कह दिया अगर विमेन पावर को देखना है ना तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखो गाइज। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।

0: पॉड, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026। सैटरडे नाइट का प्लान? पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।